0: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूत से।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके ना बुरा, और जब हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर तो हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी को जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वो हैरान हो रहा हो और उसके कुछ रफीक हों जो उसको रस्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है और हमें तो ये हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार बने, और ये भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो, और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बरपा हो जाएगा, उसका इरशाद बरहक है, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसी की बादशाहत होगी, वही पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है और वही दाना है खबरदार है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: देख आकर कूचे चाके गिरेबां में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो माँ
7: ईरानी वफद के अमेरिका जो वीजा जारी कियो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो न्यूयॉर्क खां जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज नईम रहमान के फोन मार्च मुलतवी करण जी दरख्वास्त जमायत इस्लामी जे तर्जुमान चवण आहे त हाफिज नईम रहमान खे मुल्तान पहुचण ते वज़ीर आज़म जी फोन आई वज़ीर आज़म जमायत इस्लामी खे वतन वापस पहुचण ताईं मार्च मुलतवी करण जी दरख्वास्त कई हाफिज नईम रहमान वज़ीर आज़म खे ॿुधायो त असां हुकूमत सां टकराउ नथा चाहियूं असां अवाम में हक़ लाइ निकिता आहियूं हुकूमत खे उहो हक़ ॾियणो पवंदो जेकॾहिं हुकूमत जी दरख़्वास्त ते मार्च मुलतवी करे बि छॾियूं पर एतिजाज जे हक़ तां हथ न खणंदासीं मार्च मुलतवी करण जी दरख़्वास्त ते शूरा जे मशूरा बि रद अमल ॾींदासीं इस्लामाबाद जा 24 तइलीमी इदारा अॼु खां बंदि करण जो फ़ैसिलो ज़रियनि जो चवण आहे सरकारी स्कूलनि में इज़ाफ़ी पुलिस नफ़री खे तरसाइण जा इंतज़ाम कया विया आहिनि इस्लामाबाद में ट्रैफिक मामूल मूजिब रवां दवां आहे रस्तनि ते कंटेनर मौजूद आहिनि सिक्योरिटी खदशनि सां रेड ज़ोन खे सील कयो वियो आहे ॿिए तरफ़ रावलपिंडी में तइलीमी इदारा मामूल मूजिब खुलियल आहिनि जमायत इस्लामी जो पेंट्रोल एम लेवी ख़िलाफ़ इस्लामाबाद तरफ़ निकितल ट्रेन मार्च मुल्तान पहुची वियो मार्च में शरीक कारकुन अॼु राति मुल्तान में तरसण बस सुबुह जो इस्लामाबाद रवाना थींदा जमायत इस्लामी जे अमीर चयो आहे त पहिरियों मरहलो गुज़री वियो हू ॿिए मरहले में दाख़िल थी चुका आहिनि बलोचिस्तान जे जबलनि ऐं मैदाननि मां बि मार्च शुरू थी चुको आहे रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त लेवी भतो ख़तम करियो तेहरान जे दौरे ते पोतर वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़दीकियान सां मुलाक़ात इलाइक़ाई ऐं आलमी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे सदर पाकिस्तान ऐं ईरान विच में राब्ता वधाइण ते ज़ोर भरींदे चयो आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान गॾियल सरकार खे सभिनी शोबनि में वधीक मज़बूत बणाए सघनि था मक़ामी ऐं इलाइक़ाई सुर सलाहियतुनि सां पंहिंजूं ज़रूरतूं ऐं पूरियूं करे सघजनि थियूं अमरीकी दबाव मुस्लिम मुल्क़नि में वधीक वेझड़ाई राब्तनि खे हथ ॾींदी आहे मोहसिन नक़वी चवण आहे त पाकिस्तान वापार मैशियत सिहत ऐं सियासत समेत सभिनी शोबनि में सहकार वधाइण लाइ पुरज़ुम आहे सकाफ़त ऐं साइंस जे शोबनि में बि ईरान सां सहकार खे वधीक हथी ॾिनी वेंदी पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब सफ़ारती ऐं सरकारी पासपोर्ट रखण लाइ वीज़ा जो शर्त ख़तम करे छॾियो न्यूयॉर्क में नाइब वज़ीर आज़म इसाक़दार ऐं सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान पारां मुआहिदे ते सहियूं कयूं वयूं नाइब वज़ीर आज़म इसाक़दार चयो आहे त उहो क़दम पाक सऊदी आला सतही राब्तनि में सहूलियत ॾींदो मुआहिदे सां गॾियल मुफ़ादनि जे शोबनि में बिरादर मुल्कनि जी स्ट्रेटजिक भाईवारी बि वधंदी हुकूमत ॿिनि ॾींहनि जे वक़फ़े खां पोइ पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में फेरफार करे छॾी पेट्रोल 4 रुपया 61 पैसा फी लीटर महांगो 9 अघ 393.75 रुपया मुक़ररु डीज़ल 1 रुपयो 96 पैसा फी लीटर सस्तो थियण खां पोइ 9 अघ 422.08 रुपया थी वियो जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीज़ल जा 9 अघ 22 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी नवनि सूबनि वारे होड ते क़ाइम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त नवनि सूबनि वारो मामिलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ी सां अॻिते वधी रहियो आहे अलाह चाहियो अवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा सूबनि वारो मामिलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे हुकूमत जो है केसो सूबन के टुकड़ा करण की गाल करे पियो ए हुकूमत खामोश है। हुकूमत में शामिल पार्टियों खामोश आन एक फर्द गलाए पियो वो थिंदो केरा है। मुल्क अंदर उनकी हैसियत कड़ी है इनकी सुनाणप छा है। वो घर जो नौकर आया उन घर की नौकरी करे जे वो आए सरबराह मौलाना फजल रहमान मोहसिन नकवी के सत सूरियो बुधाए छू। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे मौलाना फजल रहमान जो शख्स सूबन की गाल करे पियो उन जो मुल्क के मसलन सा जो को वास्तो ना है। एतरा बेवस असा भी ना जो तमा मुल्क सा खेलंदा रहो असा खामोश रहूं। मुल्क नवन मसलन की सट सही न सकंदो। सिंध में छह इंतजामी यूनिट ठहण घुर्जन असा खा गवर्नर खसियो हो हाने असा जा छह गवर्नर थींदा। एमक्यूएम नवन सूबन जो रिंकट बंद न कर एमक्यूएम जे मकबूल सिद्दीकार तस्कंदे चयो आहे।

0: पहला शरिया
1: दुत्मा उठ रहते हैं जहां ये वायरस बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है। और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो है। अब जिम्मेदार मतलब मुस्लिम 91 सुन।

0: फेकर के वो यार डाना से करके दिखा यार।
1: चाचा रबू वो टाइगर शरफ नहीं है, वो टाइगर शार्फ है
0: यार। वाट एवर जो भी है, मेरे को यार वो नाच के दिखा यार।
1: चले 1 2 3
2: मैं राग हूँ, तू रागनी, मैं फूल हूँ, तू खुशबू है, मैं राजा हूँ, तू हीर है, मिल बैठेंगे दीवाने दो।
0: वाह वाह वाह वाह शहजाद यार,
3: मेरी तो अम्मी कर रही सी ते जाके तेने शहजाद से नाल सेल्फी ले के मेरे को सेंड कर दी।
1: तो ले लें सेल्फी, ले लें, सारी दुनिया मेरे साथ सेल्फी लेती है, आप दोनों ले लेंगे तो क्या हो जाएगा।

0: और पेट्रैनल अंकल वो चाचू होता है, ठीक है ना जी। तो ये मुझे बताएं कि जो आलू है, आलू उसका कजन कौन सा है, उस सब्जियों में उसका कजन कौन सा है, आज का क्यों है, बातें करूंगा बहुत सारी, इतनी बातें कि बस क्या बताऊं, कितनी बातें मुझे कहते हैं और मुझे पता है आप लोग सुन के हैरान हो रहे हैं कि यार मुनव्वर शहजाद कभी एक कभी इधर है तो कभी उधर है। भाई बात यह है कि मोहब्बतें इतनी ज्यादा है तुमसे कि मैं मोहब्बतें मैं क्या करूं यार, मैं कहां जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं बस आप लोगों के से मोहब्बत ज्यादा है। कहते हैं कि लगाकर दिल हटा लेना वफा इसको नहीं कहते, लगाकर दिल हटा लेना वफा इसको नहीं कहते, दिखाकर मुंह छुपा लेना हया इसको नहीं कहते।
1: वाह वाह वाह यार, मैं भी एक पोएट्री करना चाहता हूँ अगर तेरी इजाजत हो।
0: नहीं अच्छा अच्छा बस रोए ना, शुरू हो जाए।
1: आया हूँ बड़ी दूर से खाता हूँ पराठे, आया हूँ बड़ी दूर से खाता हूँ पराठे, निकाल अपने बाप को लड़ता हूँ कराटे।
0: बहुत बुरा बहुत बुरा। बिल्कुल थैंक यू सो मच मामिका। और इसके साथ साथ आपको पता है कि मैं इस प्रोग्राम में अकेला नहीं, मेरे साथ एक जबरदस्त होस्ट है जो बिल्कुल जनाब अजीब सा है, दिखने में बहुत ही बुरा है, फिर भी मेरे साथ बैठता है चाचा रब्बू।
1: यार तू मेरे पीछे देख शहजाद, यार सर्फ सर से नहा के मेरे पीछे नहीं लग जाया कर यार प्लीज।
0: अच्छा ऐसा करते हैं सामिन, आपको पता है कि टाइम इतना जबरदस्त होता है और आप अच्छे अच्छे टाइमों के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए प्ले करता होता हूँ। क्या प्ले करता हूँ पता है आप लोगों के लिए, जबरदस्त ट्रैक है मेरे पास, ऐसे ट्रैक है कि बस क्या बताऊं कैसे ट्रैक है, सारे ट्रैक जो है तो अच्छा ये जो ट्रैक मैं सिंधी ट्रैक जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, बाबा सिंधी माणू प्यारा माणू, सिंधी माणू दिल वारा माणू, अच्छा सिंधी लिस्ट में जेतरा अभियान अनंजल एक जबरदस्त ट्रैक जो मैं ट्रैक आपको प्ले करने जा रहा हूँ ना, ये है। हाँ कहाँ गया भाई। अच्छा इसको ऐसे करेंगे, अच्छा ऐसे करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसे करेंगे कि ऐसे भी तो करना है ना हमने, ठीक है ना। अच्छा इसका म्यूजिक भाई हाँ ऐसा है कि चले करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं थोड़ा सा वेट करें।
2: तू खुशबू है, मैं राजा हूँ, तू हीर है, खूब खुश रहेगी, मिल बैठेंगे दीवाने दो।

0: Don't stop. Please continue.
1: बिल्कुल एक जबरदस्त ट्रैक आप लोगों की समातों की नजर और जो है होने जा रहा है.
2: कॉलेज आहे इन जे पुट में उन खां पोइ इन जेको आहे एडीसी

थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक जबरदस्त ट्रैक आप लोगों की जमातों की नजर करने जा रहा हूँ। बिल्कुल आए सुने और मुझे कहते हैं बुम बुम 0030001134888 0300001134888। अगर मैसेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब 8881 पर मैसेज कर दीजिए। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर वहाँ पर टाइप कीजिए SKR एंड योर मैसेज टाइप करके आप अपना मैसेज सेंड डिस्पैच कर दीजिए 8881 पर।

गाना सुनिए इस गाने के बाद कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वंस अगेन हाजिर होगा लाइव एंड एक्सक्लूसिव, कहीं भी नहीं जाइएगा, मेरा साथ दीजिएगा बिल्कुल 11 बजे तक। सो देयर यू गो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से शुरू करते हैं इस महफिल की बिस्मिल्लाह। जो कुम गदीर की वादी में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हजरत अली करमल्ला वजह का हाथ पकड़ के कहा कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। वही कौल अरबी में कहा था मन कुंत मौला फहाजा अली मौला।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: अच्छा ऐसा कहते हैं चाचा रबू के, ये मुझे बताएं चाचा रबू, आप बताएं कि ये जो सब्जियों में आलू होता है उसका कजन कौन सा होता है?
3: यार मेरे ख्याल में तोरी।
2: गलत।
3: भिंडी।
2: गलत।
3: पालक।
2: गलत। चलो देखते हैं, अभी लिसनर से ही पूछते हैं, कॉल कर लेंगे। कॉल के कॉलिंग नंबर हमारा है 03000113488। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बेहतरीन से ट्रैक है मेरे पास, इतने प्यारे ट्रैक है, इतने ट्रैक है कि बस क्या बताऊं कितने ट्रैक है। और हर जो जो ट्रैक मैं आप लोगों के मोहतरम सामीन प्ले करूंगा ना, आप कहेंगे कि यार क्या बात है भाई मुनव्वर शहजाद की।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की, मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network Sindh ki awaaz.

0: are on the big way, and you are going a long way, a long journey. So you have to take care of yourself as well. Those people which is with you. And why? Because this is not only your life. There are many lives, you know, they are with you. They are touching with you. That's why you have to take care of your life. Life is a wife. So be careful, and I hope you are enjoying with me. And I'm too. Okay, if you want to call me, if you want to message me, so dispatch me message, dispatch me your name, your area, and your, you know, message, whatever you wanna write over there. And if you... ये प्रोग्राम हुआ करता है हर मंगल की सुबह बिल्कुल 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और फिर मैं जुमेरात को भी आता हूँ सुबह 9 बजे से लेकर फिर 11 बजे तक, और फिर संडे की नाइट आता हूँ संडे फंडे के साथ, ठीक है ना। तो संडे की नाइट भी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोगों का दिमाग खाने के लिए आता हूँ। मेरे पास अच्छे अच्छे ट्रैक के कॉलें आ रही है, इतनी कॉल है कि बस क्या बताऊँ कितनी कॉल है। और मैं चाहता हूँ कि यार आपकी कॉल भी ले लें, देखते हैं कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: अदा केर काते हूं बाबा
1: साहिब, मुझे कुर्बान अली खास के लिए बुलाया गोठा गुनाम खास के लिए ने भी झंडो मरीना
0: अदा केड़ा आलम तबीयत की खैर खैरियत दा प्रोग्राम सजो बुधो आ या हाने ट्यून के वाचड़ो
1: बाबा प्रोग्राम सजो बुधो दा शुरू हुआ नवी आउट्यू।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, केड़ा आलम किया तो लगे प्रोग्राम
1: प्रोग्राम वीआईपी लगे तो नहीं तमाम वरी के हर बोली में गलाए दा ये मेरा तो
0: सिंधी बोली प्यारी बोली, सिंधी बोली प्यारी बोली, सिंधी बोली दिलवारी बोली,
1: कहीं बोली गाना
0: गायो यार। बस इनके छड़े दे तू है मां के बुदाए था जेको आलू हुंदो आलू हो ना जो जेको चाचे जो पुटरा हो केड़ी सब्जी आ
1: चाचे पुटरे केड़ी सब्जी आ को मुझे समझ में तो वो
0: कोशिश कर ना यार केतरी सब्जी टमाटो हो ना जो चाचे जो पुटरा। हलो ये तान जो सवाल जो जवाब मां सान लिखिया तो अगर तान जो सवाल जो जवाब सही हुंदो तपो मां के 100 जो इजी लोड कराएं जो ठीक है ला
1: ठीक है।
0: अच्छा कातों दा गाला है केड़े शहर मो
1: बाबा गो थाजी गुलाम खास के लिए लगे झंडो मरी मना उता का कुर्बान अली खास के लिए मना डिस्ट्रिक्ट मना थेरी सारी मीरपुर खास।
0: अच्छा मीरपुर खास जबरदस्त यार जबरदस्त, थैंक यू सो मच अदा ता असा के कॉल की। असा जो प्रोग्राम 11 बजे तायो तो जरूर बुझ जो ठीक है ना।
1: ठीक है आला कर देना यो कला नेक्स्ट कलाम जी को लाइन
0: जी जी जी जी
1: काठड़ी का गुलाम
0: रसूल ओके ब्रदर ओके ब्रदर थैंक यू सो मच ऑल। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रैक आप लोगों को सुनाऊं कि आप हैरान हो जाएं। राजी मेरी राजी बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझे मुझसे हटाने की साजिश की है। तुम तमाशा समझते हो
2: जो हम
0: तुम तमाशा समझते हो खुदा राव वो जिंदगी हमारी जो तुमने कभी की ही नहीं हो जाते। अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से हमारे साथ मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे हमदम मेरे बंधु।
3: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: अच्छा से मेरा दोस्त मुझे सुन रहा है, कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं?
3: अल्लाह पाक का शुक्र है।
0: अच्छा क्या कहना चाहेंगे जनाब, आज पहली दफा मुझे सुन रहे हैं?
3: जी जी।
0: अच्छा तो कैसा लग रहा है, मेरी बुरी सी आवाज आपको कैसे लग रही है?
3: नहीं नहीं आपकी बुरी नहीं, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी और आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी।
0: अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, क्या कहना चाहेंगे आज आज आज का सवाल सुना था आपने?
3: जी जी मैंने सुबह से सुन रहा हूँ। वो सब्जी के ना आलू का एक कदम वो एक मेरे ख्याल में टमाटर या गोभी है।
0: टमाटर है, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, टमाटर या गोभी। आपका नाम क्या है?
3: रंजन कुर।
0: रंजन, अच्छा रंजन इंशाल्लाह मैं आखिर में बताऊंगा कि जो आलू का कजन होता है वो कौन सी सब्जी होती है, ठीक है?
3: जी जी कुछ दोस्त हैं
0: शामिल कर लें जल्दी जल्दी टाइम कम। बहुत ज्यादा शुक्रिया।

अच्छा बिल्कुल जनाब, थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक की जाने भी बढ़ेंगे। अच्छा इसके बाद आप लोग न्यूज भी सुनते हैं, न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। न्यूज के बाद फिर छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होता है, फिर हाजिर होऊंगा। और आपको पता है मैं आपका घंटे इंशाल्लाह मैं अभी चलूंगा न्यूज की जाने बढ़ेंगे, फिर आएंगे आपके लिए कहते हैं।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 10 AM दिस ऑन इंटरनेशनल।
3: अब आप स्विम नेटवर्क पर

0: वज़ीर-ए-आज़म मुख़्तसर वफ़द सां गॾु न्यूयॉर्क पहुची वियो। शहबाज़ शरीफ़ गैर क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे 81वें इजलास में शिरकत कंदो। वज़ीर-ए-आज़म 25 सितंबर ते ख़िताब में इलाइक़ाई ऐं आलमी सलामती जी तब्दील थींदड़ सूरताल जे हवाले सां पाकिस्तान जो मौक़िफ़ पेश कंदो। ॻाल्हियुनि सफ़ारतकारी ऐं तकरारनि जे पुरमुन हल जी अहमियत ते ज़ोर पिण भरियो वेंदो। ईरान जो परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी न्यूयॉर्क पहुची वियो। अब्बास इराक़ी गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे इजलास में शिरकत कंदो। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान बि अॼु न्यूयॉर्क पहुचंदो। गॾियल क़ौमुनि जे जनरल असेंबली जे इजलास में शिरकत लाइ अमरीका पारां सदर मसूद पज़ेशकियान, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ी ऐं ईरानी वफ़द खे अमरीका जो वीज़ा जारी कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो न्यूयॉर्क खां जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान खे फोन, मार्च मुल्तवी करण जी दरख़्वास्त। जमायत इस्लामी जे तर्जुमान जो चवण आहे त हाफिज़ नईम रहमान खे मुल्तान पहुचण ते वज़ीर आज़म जी फोन आई। वज़ीर आज़म जमायत इस्लामी खे वतन वापसि पहुचण ताईं मुल्तवी करण जी दरख़्वास्त कई। हाफिज़ नईम रहमान वज़ीर आज़म खे ॿुधायो त असां हुकूमत सां टकराउ नथा चाहियूं, असां सीं मार्च मुल्तवी जो फैसलो ज़रियनि जो चवण आहे साइण जा इंतज़ाम कया विया आहिनि। इस्लामाबाद में ट्रैफिक मामूल मूजिब रवां दवा आहे। रस्तनि सिक्योरिटी ख़तरनि सां रेड ज़ोन खे सील कयो वियो आहे। ॿिए तरफ़ रावलपिंडी में तइलीमी इदारा मामूल मूजिब खुलियल आहिनि। जमायत इस्लामी जो पेंट्रोल एम लेवी ख़िलाफ़ इस्लामाबाद तरफ़ निकितल ट्रेन मार्च मुल्तान पहुची वियो। मार्च में शरीक कारकुन अॼु राति मुल्तान में तरसण बि सुबुह जो इस्लामाबाद रवाना थींदा। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान चयो आहे त पहिरियों मरहलो गुज़री वियो, हू ॿिए मरहले में दाख़िल थी चुका आहिनि। बलोचिस्तान जे जबलनि ऐं मैदाननि मां बि मार्च शुरू थी चुको आहे। रुगो हिकु ई मुतालबो आहे त लेवी भत्तो ख़तम करियो। तेहरान जे दौरे ते पोतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान सां मुलाक़ात। इलाइक़ाई ऐं आलमी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ईरानी सदर पाकिस्तान ऐं ईरान विच में राब्ता वधाइण ते ज़ोर भरींदे चयो आहे त पाकिस्तान ऐं ईरान गॾियल सरकार खे सभिनी शोबनि में वधीक मज़बूत बणाए सघनि था। मक़ामी ऐं इलाइक़ाई सुर सलाहियतुनि सां पंहिंजूं ज़रूरतूं पूरियूं करे सघजनि थियूं। अमरीकी दबाव मुस्लिम मुल्कनि में वधीक वेझड़ाई राब्तनि खे हथ ॾिनी आहे। समय बि ईरान सां सरकार खे वधीक हथी ॾिनी वेंदी। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब सफ़ारती ऐं सरकारी पासपोर्ट रखण लाइ वीज़ा जो शर्त ख़तम करे छॾियो। न्यूयॉर्क में नाई वज़ीर आज़म इसाकदार ऐं सऊदी अरब जे वर परॾेही वज़ीर फैसल बिन फरहान पारां मुआयदो। नाई वज़ीर आज़म इसाकदार चयो आहे त उहो क़दम पाक सऊदी अला थींदो। असांजे शोबनि में बिरादर मुल्कनि जी स्ट्रेटजिक भाईवारी बि वधंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
4: हक़ सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नई का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: कयो आ ठीक आदा
3: हा मां तो जवाब मां के समझ में कुछ गाल बदन में आई मां तो
2: हां दिस मां 90 ते कम कयो आ मां 88 ते मां कम कयो मां ताजे घोट की कम कयो मां पेशावर कम कयो मां इस्लामाबाद कम कयो आ बस छड़ो कम कयो आ मां
3: सही है सही अला कंदो ता जो प्यारो आवाज आ तो मानु ता के घुरांदा ने प्यारो
2: आवाज गाल हाने समझियो जोरी घुराइना दे आ हाने छो न इंदा से मोहब्बत आ हर के सा मोहब्बत आ सा जी तो पो इंदा हूं ना दा ठीक है ना दा
3: बिल्कुल
2: सही
3: बिल्कुल
2: तबियत सही आ
3: सब खैर लगो प्याला जो ऐसा ने गर्मी दाढ़ी लगी पे आ घोटकी में
2: है हाय हाने छा के एसी वठी दिया तो के
3: बस पको भी हले बजो बस मा जान पांच प्रोग्राम बुधी हेठा
2: पको भी तो टंग टंग करे तो ना अच्छा है बुधाय दा आलू जो कजन जेको चाचे जो पुट केड़ो आलू जो
3: बस आलू जी गाल न कर बस आलू

0: mana alu kai kai tabati yo safa
1: amanu gana alu charda ne asa
0: bi alu acha acha aur alu acha acha aur ta ina mo nikro ina ta na asa ja sindhi ko mena me nati nikre
1: ha dost shamil karane
0: hal jaldi kar ba
1: pyar dost ala dar mar mohammad ali khan pat patha khan pat ke aur abdullah bangwar gora bangwar popat pita ki mor sabhi
0: Haan. Ali Gar Khan Mar, okay. Okay, okay, okay, okay. Love is a love is a love. This is my Bhagwan. Hi, hi.
2: Zindagi awargi hai, zindagi awargi hai, zindagi awargi hai, zindagi.
0: बहुत ज्यादा शुक्रिया से कराची से हमें मैवेज सुनिए कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपकी तरह प्रोग्राम आप आई लव दिस प्रोग्राम बहुत ज्यादा शुक्रिया मैवेज और सरदार हमें सुन रहे हैं सरदार भाई कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है उज़ैफा खान हमें पिशावर से सुन रहे हैं थैंक यू सो मच कहते हैं कि जबरदस्त प्रोग्राम है उसामा हमें सुन रहे हैं पिशावर से थैंक यू सो मच सईद भाई हमें सुन रहे हैं सक्कर से थैंक यू सो मच सईद भाई बहुत ज्यादा शुक्रिया जान सैद खान हमें सुन रहे हैं पिशावर से थैंक यू सो मच और उसके साथ इनायतुल्ला हमें सुन रहे हैं इनायतुल्ला मंगी साहब हमें सुन रहे हैं सक्कर से कहते हैं प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है माहीन हमें सुन रहे हैं शावर से माहिन बहुत ज्यादा शुक्रिया रफीउल्लाह हमें सुन रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्रिया ताबिश हमें सुन रहे सखर से कहते हैं सलाम से और नदीम भाई हमें सुन रहे हैं कहते हैं बहुत अच्छा मुख्तियार भाई हमें सुन रहे हैं मुख्तियारा हमें सुन रही है थैंक यू साजान अभी सुन रहे पुलिस वाला मेरा दोस्त है और कहते हैं ज़ियारत खान मामा हमें सुन रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्रिया मुस्तकीम हमें सुन रहे हैं थैंक यू सो मच मुस्तकीम जैसे नाप लूंगा अभी हमें सुन रहे हाय हाय हाय अच्छा इनायत हमें सुन रहे हैं थैंक यू सो मच और नाइला हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया शगुफ्ता हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया उमेरा हमें सुन रही है शुक्रिया मुबशिर हमें सुन रही है अफजाल खान सुन रहे हमें सुन रहे हैं बहुत ज्यादा राबिल हमें सुन रहे हैं
3: यार सही नहीं नाम ले नहीं तो गुद्दी मारूंगा मैं तेरे को
0: अच्छा गजाल हमें सुन रहे हैं सबाउन हमें सुन रहे हैं थैंक यू हिदायत हमें सुन रहे थे उनकी और हिना हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया हिना के साथ आयजा हमें सुन रही है यूनिवर्सिटी में हमें सुन रहे हैं वाओ क्या बात है यूनिवर्सिटी पढ़ा करें सुना मुझे ना सुना करें पढ़ा करें अपना अपने काम से काम रखा करें खान बहादुर हमें सुन रहे थे बुशरा हमें सुन रही है थैंक यू सो मच बहुत ज्यादा शुक्रिया बुशरा कैसी है अपने खर्चे पे डैड के खर्चे पे मेरे नजीर भाई हमें सुन रहे थैंक यू सो मच आरिफ सुमरो हमें सुन रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अवान खान हमें सुन रहे
3: थक गया मैं
0: जब सो गाँव दूर दूर तक कोई बच्चा रोचा और वो सोता नहीं तो माँ कहती है बच्चा है मुन्ना है बबलू चुप हो जा वरना बबलू बम बम आ जाएगा और बम बम आते हैं तो हवाएं तूफान में बदल जाती हैं

0: थैंक यू सो मच सवा मी क्या, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, लेते हैं कॉल, देखते हैं हमारे कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: अदा
1: क्या
0: खैर, तबीयत सही है?
1: खैर नहीं।
0: जी जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम असांगे बुद्ध उतारा
1: जी सही। पहले दफा
0: क्या लगे तो ताकि मांझी आवाज क्या लगे थी
1: प्रोग्राम सही
0: दा दा दा दा जी
1: तमाम
0: सुठो आ ताकि सुठो तो लगे
1: जी साईं।
0: अच्छा वडी मेहरबानी वडी मेहरबानी। मुंजो नालो छा है
1: साईं? आज प्रोग्राम तो ना
0: तुंजो नालो छा है?
1: निसार अहमद पिताफी।
0: निसार अहमद पिताफी ता ना खबर आ ताजे गोठ में आया हुआ मा ते दावत खाई वयो आ ताजे पिताफियन जे गोठ में यार है तांजो सर गुड गुड गुड ताया मां छे मियाराने में चाके वठी विया साण गाड़ी में पो गाड़ी में छडी विया मां उन टाइम 90 घोटकी ते हुंदोम ताके याद ना है। अच्छा हे बाकी बुझाय तो क्या छा छे चाहें तो दोस्तन के भी शामिल करे वटे आलू जो कजन केड़ो सब्जी में केड़ो आ है चाचे जो पुट जो कजन आ चाचे जो पुटरा
1: मता नहीं हुजे
0: मता हुजे मतलब
1: जी मत
0: हाँ मता मता मता ठीक है आदा जो खैर लगो पियो
1: खैर
0: हल छुट्टी कराने ठीक है
1: जी सर
0: अल्लाह हाफिज।
2: फासलों क्यों बहुत है हमें दूर रहे।
0: अस्सलाम वालेकुम।

बिल्कुल जनाब, बहुत ज्यादा शुक्रिया तमामी का जिन्होंने ट्यून किया हुआ है। बिल्कुल GFM 88 नेटवर्क तमाम का तमाम आठों नेटवर्क पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ज्यादा शुक्रिया। और अगर कॉल करना चाहें 03 00 11 34 88

0: 9:30 AM This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन कदमन के रोके भी सके.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

आर्च क्रीम हेयर कलर हर रंग में। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: continue.
1: Once again, warm welcome back to Mami ko aur kitty kitty marne kahenge aur bilkul is time hamare studio ki ghadi mein 10 baj ke 37 minute hua chahte hain. Kaise hain aap log? Tik tak zabardast aur program bilkul thoda sa reh chuka hai, balki thoda sa kya kahenge, ab bahut sa reh chuka hai. और लेते हैं कॉल, आपके कॉल का सिलसिला स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैसेजेस भी इतने आए हैं, कॉल भी इतनी आई हैं. और आपसे क्वेश्चन ये था, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन क्वेश्चन ये था कि आलू का जो कजन होता है वो सब्जियों में कौन सा होता है, जल्दी से बता लीजिए. बड़े होशियार बंदे बताएंगे मुझे और कुछ जो है वो रह जाएंगे. मौसम शामिल सब कुछ होने के बावजूद भी लोग खुश नहीं होते, बहुत ज्यादा ये चीज मैंने अवेयर देखी है. और क्योंकि खुशी का ताल्लुक शुक्र से होता है और शुक्र हम में होता नहीं है, तो इसीलिए सब कुछ होते हुए भी अगर हम शुक्र ना करें. आप लोगों की मैं देख चुका हूं, बातें सुन चुका हूं कि जितना भी उनके पास माल दौलत चीजें एक्स वाई जेड सब कुछ होते हुए भी वो शुक्र नहीं करते, इसलिए फिर वो खुश भी नहीं होता है. कहते हैं कि खुशी का ताल्लुक शुक्र से है, गाड़ी बंगला दौलत शोहरत.

अरे बाबा बहुत नादा है वो, बहुत नादा है वो, जरा समझाइए इसको। बहुत नादा है वो, जरा समझाइए इसको। बात करने से, बात ना करने से मोहब्बत भला कम तो नहीं होती। आपको जिससे मोहब्बत होती है आप उससे बात करें ना करें, मोहतरम सामीन, मोहब्बत का सिलसिला जो है वो कम नहीं होता है। मेरी बात याद रखिएगा, बड़ा अपने दिल पे लिख लीजिएगा।

बहुत गहरे ख्यालों में, बहुत गहरे ख्यालों में, मोहब्बत के हवालों में तुम्हारा नाम आ जाता है, मुझे अच्छा सा लगता है। बहुत गहरे ख्यालों में, मोहब्बत के हवालों में तेरा नाम आ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।

वजह है कि अगर तू मुझे छोड़ता है तो इसमें तेरी खता क्या है, अगर तू मुझे छोड़ता है तो इसमें तेरी खता क्या है। हर शख्स मेरा साथ निभाता नहीं, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता।

कहते हैं कि इसलिए तो जमाने में अजनबी हूँ मैं, इसलिए तो जमाने में अजनबी हूँ मैं कि फरिश्ते हैं सारे लोग, फरिश्ते हैं सारे लोग आदमी हूँ मैं। हाय हाय, बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल चलाना है मुझे, लेकिन ये चल गया कुछ और, डोंट वरी अबाउट दैट। और ऐसा करते हैं कि आपको सुनवाते हैं एक अच्छा सा ट्रैक और कॉल लेते हैं। कॉल इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि बस क्या बताऊं कितनी आ रही है, इसलिए कहता हूं कि कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल भी लेते हैं और मेरे पास एक अच्छा सा ट्रैक भी है, ट्रैक भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।

बिल्कुल जनाब, इस टाइम कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है और आपको पता है कि अगर ब्रेक ना हो तो हमारी जिंदगी में ब्रेक आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको कमर्शियल ब्रेक में मिलती हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कहीं भी नहीं जाएगा, मेरा साथ दीजिएगा।

0: अच्छा जी हाफिज साहब आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, और मायरा हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, और रोमैमा हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, काबिया खान हमें सुन रही है बहुत ज्यादा शुक्रिया, सुफियान हमें सुन रहे हैं, फियोल्ला हमें सुन रहे हैं, ताबिश हमें सुन रहे हैं, थैंक यू। हाय हाय इतने मैसेज है। अलनूर जनरल स्टोर वाले मेरे दोस्त सुन रहे हैं न्यू पेंट से, अता भाई थैंक यू सो मच, अता कैसे हैं, सलमान हमें सुन रहे हैं जबरदस्त, जैद खान हमें सुन रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। और मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ट्रैक हैं कि क्या बताऊं, कितने अच्छे अच्छे ट्रैक हैं, और ट्रैक जो भी मैं आप लोगों के लिए प्ले करता हूं बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी आज का क्वेश्चन हमने आपसे ये पूछा था, क्योंकि अभी बंद कर देते हैं इसको, सिस्टम को चेंज कर देते हैं, क्योंकि छुट्टी भी करनी है, टाटा बाय बाय भी कहना है आप लोगों से, मुझे कहते हैं मुनव्वर शहजाद, और प्रोग्राम मंगल के दिन ये होता है सुबह, मंगल और जुमेरात को सुबह आता हूं और संडे को फिर रात को देर से आता हूं, ठीक है ना बाबा। तो बात ये कि अच्छे अच्छे सॉन्ग भी सुनेंगे और बातें भी करेंगे, और मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक अच्छा बेहतरीन ट्रैक हो जाए, और साथ में फिर आपसे छुट्टी भी लेंगे ना भाई, छुट्टी तो लेना हमारा फर्ज है, छुट्टी करेंगे और जाएंगे फिर आपको कहेंगे टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अच्छा सा ट्रैक आप लोगों की समातों की नजर करने जा रहा हूं, और सुनिए इस ट्रैक को, मेरा साथ दीजिए। आखिर में फिर कहते हैं कि आज का जो सवाल था उसका जवाब ये है कि आलू का जो कजन कचालू है ना यार, तुम समझते ही नहीं हो, आलू का कजन जो होता है चाची का, तो आप लोग एक तो मैं आपको समझा के थक जाता हूँ फिर भी आप समझते नहीं, ये गलत बात है, नहीं समझ लिया करें, जान छुड़ा लिया करें
1: फ्रीडम।
0: और मेरे पास एक जबरदस्त बेहतरीन सा ट्रैक है, चलें ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक के बाद फिर आपसे छुट्टी भी चाहेंगे क्योंकि 11 बजने वाले। बहुत ज्यादा शुक्रिया तमामी का जिन्होंने मैसेज किए, जिन्होंने कॉल किए, जिन्होंने सिर्फ खामोशी से सुना, उन तमामी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह जुमेरात को सुबह में 9 बजे से लेकर ठीक 11 बजे तक वंस अगेन हाजिर हूंगा जुमेरात को।

0: तुम जानती नहीं हो जुबीन, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम जब साथ होती हो ना तो दिल करता है कि हर वक्त बस फूलों की बारिश होती रहे। हमेशा के लिए तुम्हें इस मोहब्बत के रिश्ते में कैद करना चाहता हूँ।
1: लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ।

को बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम और आपके फीडबैक से मुझे अंदाजा हो गया, थैंक यू सो मच आल। और कहते हैं कि लव बिगेस्ट लव, और दिल से दिल को राह उठिए मोहतरम सामीन, एक दूसरे से प्यार कीजिए, मोहब्बतें आप फैलाइए, मोहब्बतें समेटिए। टेक केयर, अपना ख्याल कीजिएगा और मुझे बताएं कि आप लोग जो है वो अच्छा महसूस करेंगे। सो देयर यू गो, जबरदस्त ट्रैक, एंड आखिर में थैंक यू सो मच, हाफिज़, टेक केयर पाकिस्तान, फायदाबाद।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ash Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: सैद खान भरसा कतल कैल नौजवान जे धड़ खां धार कैल मुंडी हथ गुजरल खड मां नौजवान जो सिसी धड़ खां धार थियल लाश मिलियो हो। नौजवान के बलूचिस्तान जे इलाइके ओस्ता मोहम्मद मां अगवा करे कतल कयो वियो। वारसन मूजिब नौजवान के बिरादरी जे माण्हुनि पुराणी दुश्मनीअ तां कतल कयो आहे। कंदकोट में सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ एसटीपी के एहतजाज की रैली। कारकुनन एसटीपी ऑफिस का प्रेस क्लब ताई रैली कढ़ी एहतजाज कयो। अब सिंध के टोड़न वाली साजिश पूरी थियण न डींदासी। खानपुर भरसा हथियारबंदन के ईंदड़ वींदड़ गाडियन का फुरलुट मुसाफिरन जो चवण आए त इंडस हाईवे ते रहीमाबाद लाड़ी वट हथियारबंद बस मां लाहे लखे रूपया रोक रकम मोबाइल फोन ए बो सामान फुर करे विया आहिनि। पुलिस अमन अमान बहाल कराइण में नाकाम बणजी वई आहे।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
8: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
10: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू दुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे हकी।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अभी बुधो प्यार GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
4: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
5: Har bar ja nandra kadam ik nayi duniya da vadhan ta, par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. Iniya kare jadhe bhi polio muhim dauran polio workeran ji dastak the ta dar kholyo ae pehje baran ke polio khan bachao jab katra zarur pyaryo chho ta ye katra बारन में मुदाफ्ती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
7: This program is brought to you by
4: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
1: Abhi budho pyar GA Hyderabad Matyari FM 91.6 Sindh jo awaaz.
2: O pita ja pitai pita te vasai noor mujho to
1: Sindh jo awaaz budhanda raho.

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12 p.m. This project is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Sona Urea Granular. मिट्टी जो
5: जेटा दारमुन दे कयाम लाए पर अजम आहे पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया ए मिस्री परदेही वजीरन जे न्यूयॉर्क में मुलाकात खिते जी सूरतयाल समेत मुख्तलिफ मामलन ते गालियो खिते जी सूरतयाल ए अमन जे कयाम बारे क्वेश्चन जारी रखण ते इतफाक नायब वजीर आजम साकदार सऊदी ए लिबनाई वजीर परदेही असां अलग अलग मुलाकातूं भी कयूं।

0: निज़ाम में रवानी जंगबंदीअ जी भञकड़ी थी रही आहे। तकरार जे निबेरे लाइ तकड़ा कदम ज़रूरी आहिनि। फलस्तीनी बाबति कमेटीअ खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त अमेरिका, मिस्र, कतर ऐं तुर्किया जूं फलस्तीनी मसइले ते कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि। गज़ा समेत फलस्तीन जो मसइलो हल करणु घुर्जाउ आहे। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां खुराक जे आलमी इदारे जे नुमाइंदे अनीता हर्ष जी मुलाकात। स्कूलनि में खाधे जी फरामी, अॻवाट कदमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ात सहकार वधाइण ते गौर कयो वियो। सिंध हुकूमत ऐं गॾियल क़ौमनि जे खुराक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबब सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़ितनि में शामिल आहे। ग़िज़ाई कोर्ट खे मुंहुं ॾे ऐं स्कूलनि में हाज़िर बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियाद रखियो पियो वञे। टंडो गुलाम हैदर वेझो परणियल नारीअ जो घर मां फाओ लगल लाश एतवारसन जो सहुरनि ते क़तल करण जो इल्ज़ाम। ॻोठ जीओ कोली में रवीना ज़ाल केवल कोली जो घर मां लाही ऐं चाचे पारां मुड़ुस ऐं सहुरनि ते नारी खे तशद्दुद करे क़तल करण जो इल्ज़ाम। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कंबर जे इलाइक़े कुबो सैद खान भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ। नौजवान मंज़ूर चांडियो जो गुज़िरियल ॾींहुं सिसी खां धार कयल लाश मिलियो हो। कंदकोट में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एसटीपी जे एहतजाजी रैली। कारकुननि एसटीपी आफ़ीस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एहतजाज कयो। अॻवाड़नि चयो त सिंध धरती असांजी माउ आहे, सिंध खे टोड़ण वारी साज़िश पूरी थियण न ॾींदासीं। मदेजी में ॿ महीना अॻु क़तल थियल नौजवान जे खून जो जरगो ज़रिए निबेरो। इल्ज़ाम हेठि आयल धरती धुर ते 55 लख रूपया ॾंढ मुक़रर। कुमारिया हाउस ते नजफ खान जे सरपंची हेठि ओशाक जखरो जे क़तल जो जिर्गो थियो। क़तल जे इल्ज़ाम हेठि आयल जुणे जा शहर ऐं मंगरिया बिरादरी जे जवाबदारनि मथां 55 लख रूपया ॾंढ लागू कयो वियो। ओशाक जखरो जे खून जे बहा 25 लख रूपया ऐं नाक क़तल करण जा 25 लख रूपया चटी विधी वई। धुरियूं मक़तूल जे वारसनि ॾे मेल खणी वेंदियूं। ॾंड जी रक़म मिलण बाद मुतासिर धुर राज़ीनामो लिखी ॾींदी। खैरपुर में शागिर्दियाणीअ खे मुंबई नाल अॼु लुट वारो निशानो बणाईंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ एहतजाज। शागिर्दियाणी जे वारसनि ऐं शहरनि गाड़ी मोरी रोड खां रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन मौजूदु पुलिस नियाणीअ खे लया लुट जो निशानो बणाईंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करे रही आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: धर्माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना देव निवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
4: आप सुन रहे हैं
5: DAFM 88
4: नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
1: 12:45 PM This time check is brought to you by
3: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
5: This program is brought to you by
3: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6, Sindhu Jo Awaaz.
7: O pita ja pitai, pita te vasai noor mujo to.
6: Sindhu Jo Awaaz, budhanda raho.

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफ एम 91.6।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
6: वेरे लाइ तकड़ा कदम जरूरी आहिनि। फलस्तीनी बाबति कमेटीअ खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो आहे त अमेरिका, मसर, कतर ऐं तुर्किया जूं फलस्तीनी मसले ते कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि। गिज़ा समेत फलस्तीन जो मसलो हल घुर्जाऊ आहे। सैद मुराद अली शाह सां खुराक जे आलमी इदारे जे नुमाइंदे अनीता हर्ष जी मुलाक़ात। स्कूलनि में खाधे जी फरामी अगवाट कदमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ लाइ सहकार वधाइण ते गौर कयो वियो। सिंध हुकूमत ऐं गडि॒यल क़ौमनि जे खु़राक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। सैद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबब सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़ितनि में शामिल आहे। ग़िज़ाई खोट खे मुंहुं ॾे ऐं स्कूलनि में हाज़िरी बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। मीरपुर माथेलो वेझो ॿिनि धुरियुनि में संगावती तकरार तां जहिड़ो टे ॼणा क़तल, पंज ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ बाबो डो में मरण आस बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में संगावती तकरार तां जहिड़ो थियो। जहिड़े दौरान गोलियूं लॻण सबब बिलावल मरणास, वकार ऐं मुख्तार मरणास मारिजी विया। ज़ख़्मियुनि मां फ़क़ीर मोहम्मद परियल मुंतकिल। मरियल नारी भाउ लॻल लाश हथ, वारसनि जो सहुरनि ते कलीजो घर मां लाश मिलियो। पीउ ऐं चाचे पारां क़तल करण जो इल्ज़ाम, जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कंबर जे इलाइक़े कुबो सैद खान भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ कई वई। नौजवान मंज़ूर चांडियो जो गुज़िरियल ॾींहुं सिसी खां धार थियल लाश मिलियो। खिपरो वेझो नारा केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथ आयो आहे, इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। डंग पतण वटां नारा केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश मिलियो, सुञाणप न थी। सखर जे एतिसाब अदालत एमएनए एजाज़ जखराणी ख़िलाफ़ 31 करोड़ रूपयनि खां वधीक जो करप्शन रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल करे छॾियो। एतिसाब अदालत मशीनरी मेंटेनेंस में 31 करोड़ रूपयनि खां वधीक करप्शन वारे रेफरेंस ते ॿुधणी कई। अदालत जवाबदार धुर जे वकीलनि जे केस एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल करण वारी इस्तिहा मंज़ूर कई। नेब जे एतिराज़ न करण ते एतिसाब अदालत रेफरेंस खे एंटी करप्शन अदालत मोकिलण जो हुकुम ॾिनो। कोर्ट में सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ एसटीपी जे एहतजाजी रैली। कारकुननि एसटीपी आफ़िस खां प्रेस क्लब ताईं रैली कढी एहतजाज कयो। अॻवाणनि चयो त सिंध धरती असांजी माउ आहे, सिंध खे टोड़ण वारी साज़िश पूरी थियण न ॾींदासीं। फेसगंज जे पुछड़ीनि में पाणीअ जी खोट शिदत इख़्तियार करे वई। फेसगंज एक्शन कमेटीअ जो धरणो, चयन वाहन फेसगंज वियो वाह, अली नवाज़ वाह ऐं पंद्रहों वाह में पाणीअ जी शदीद खोट ख़िलाफ़ एक्शन कमेटी पारां मेहरान हाईवे खां रैली कढी पका चांग जे मुख चौक ते धरणो वियो। मुज़ाहिरनि जो ज़रई पाणी फराहम करण जो मुतालबो।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
7: खुशखबरी हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ऐं इलाज होम्योपैथिक तरीक़े सां कंदा आहिनि।

0: अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज़ सिहत याब थी चुका आहिनि। अव्हां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछरु खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
1: हर ॿार जा नंढड़ा कदम हिक नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि था मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

तुम्हारी उम्मीद तो माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंजब दंदर तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात हैं तो मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं की समंद है, शादों की बारिश, पासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात, नींद से जागता जमी से आसमान, जिंदगी से मौत तक, जहाँ से दर दर से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे, तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आपके खूबसूरती के लिए हैं जनाब लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। यहाँ पर प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से उन खूबसूरतियों को मेंटेन भी रख सकते हैं, क्योंकि कई मरतबा हम जरा इन चीजों को लेकर भी परेशान हो जाते हैं कि भाई खूबसूरती तो चले हम जैसे तैसे हासिल ना कर ही लेते हैं, लेकिन खूबसूरती को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, या फिर आप ऐसा वाला सीन बन जाता है कि बहुत ज्यादा वाली टोटके यूज करने वाले इंसान बन चुके हैं, या फिर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आपको ये लगता है कि भाई खूबसूरती तो हमें कैसे भी करके हासिल करनी चाहिए। तो खूबसूरती को हासिल करना और खूबसूरती को मेंटेन करना ये बहुत ही जरूरी सी बातें बन जाती है, तो ये जरूरी सी बातें इस प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलेंगे कि कैसे आप जो है ना हासिल कर सकते हैं खूबसूरती और खूबसूरती को मेंटेन भी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें होने वाली है, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जनाब बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स लेकर हाजिर खिदमत है, जिनमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो कि आपकी खूबसूरती के मुताबिक ही तैयार किए गए, आप हर एक इंसान की स्किन से रिलेटेड ही जनाब ये प्रोडक्ट तैयार किए गए, क्योंकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, तो हर तरह से अगर आप अपनी स्किन को लेकर परेशान रहते हैं तो भैया आपकी परेशानियों को दूर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए क्यों और कैसे जरूरी है। बिल्कुल जनाब, बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ करनी है, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल सर, अपना भी तारीफ करवाते हैं तो लिसनर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डी जे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और चलिए जी यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं रेडी खेडी हो जाइए जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखने के लिए और खूबसूरत बनने के लिए, और इसी के साथ साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए तो कैसा हालत है, कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे, तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले, और इन 2 घंटों में हम करेंगे आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें और इन्नी

बातों में जाहिर सी बात है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र तो होने ही वाला है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए भाई। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई मरतबा अगर आप किसी की स्किन देखें जो कि खराब हो चुकी हो या फिर उसे जरूरत हो कोई अच्छा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की, तो आप उसे झट से बता सकेंगे भाई आपकी स्किन को नीड है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर किस तरह वर्क करते हैं इसके बारे में भी बातें की जाएंगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, कभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। आपके होंठों पर 440 उल्की समाल आने का काम करेगी भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समाल लाते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम करेंगे जनाब एक बहुत ही प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत सा कलाम जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो आइए जरा पहले सबसे पहले हम कलाम को सुन लेते हैं। कलाम सुनने के बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। और आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जी, क्या बात है, आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए हैं जनाब, चाहे आप मर्द हज़रात हैं, चाहे आप ख़वातीन हैं, आप सारे लोग ही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। ये दो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना चाहें तो बेशक कीजिए जनाब, इस्तेमाल कीजिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताऊंगी ना, ये आप लोगों की खूबसूरती में इस तरह से काम करेंगे कि भाई आप कहेंगे हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, हम पहले सिदराबाजी की बात क्यों नहीं मान रहे थे। तो खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए और वहां से मालूमात लीजिए और परचेज कीजिए, और अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन साथ साथ जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, तो उसकी जाने भी सर आ जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को तरीकेकार भी बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं। ओके जी, तो सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आज आपने मुझे बताना है कि वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ जी, वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो सारे जानवर ही आवाज निकाल रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी दुनिया में जानवर पाया जाता है जो कोई भी आवाज नहीं निकाल सकता। तो आप मुझे बताएं वो कौन सा जानवर होने वाला है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं, या फिर आप घुड़ने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि हमें चोरी चोरी चुपके चुपके से सुनने वाले लिसनर्स, तो ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप आइए पेज के ऊपर, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। बिल्कुल ना, पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी आप ही लोगों का काम होता है, तो बस सिर्फ कमेंट कर देना काफी नहीं होता, पोस्ट को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है जी। ये तीनों काम कीजिए, फिर सुकून से बैठ जाइए और प्रोग्राम को एंजॉय करते रहिए। और इसी के साथ साथ मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। और इसी के साथ साथ 8881 फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस जो कि मुझे मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले हमें फरवा गुल ने ज्वाइन किया है, कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, हाय आप ही, आपकी तबीयत कैसी है, होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल। यस आई एम गुड, आप बताएं कैसी है। और कहती है कि आप ही अर्ज किया है, टूटा हुआ दिल सबको नजर नहीं आता मगर दर्द हर सांस में होता है। क्या बात है जी, बढ़िया हो गया। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद, कहते हैं कि आओ तारीख हमें गोली दस, तू तारीख में गोली दे, आओ किताब थी मिलंदस, दो ख्यालन में गोली दे, आओ ख्वाब थी मिलंदस, माँ को हुसन जो शहजादो तो नाहा पर तू गुलाब में गोली दे, आओ गुलाब थी मिलंदस। वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम, मौलाना सलाम अदर कितनी अदा चालाए खुशायो सब चाक स्लेट कला मस्जिद डबी अजाम यची वयासी प्रोग्राम तो लाजवाब आई हमेशा जिया तमाम वांगे। थैंक यू वेरी मच, प्यारा भा तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया, आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर कहना हलो। और कहते अदा तो अच्छी वो अदा बिल्कुल अच्छी हो, तो अच्छी साड़ी में गलत अफवाहों न फैलाइंदा कर, अल्लाह सही डो दी अखलाक भाई मेरे साथ।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: क्यों जरूरी है? क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सबसे पहली बात कि आप लोगों के लिए जनाब इतना जबरदस्त सा फार्मूला ऐड किया गया है, जिसे लगाने के बाद आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ आपकी हिफाजत भी कर रही है, हसीन और प्यारे प्यारे। तो चाहे आप मर्द हस्तादी, चाहे आप खवातीन, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है। और आपकी स्किन किसी भी टोन की है, हर स्किन के ऊपर आप डी स्किन का ब्यूटी क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये बात आप लोगों को बता दें चलूँ जनाब, जो कि मुझे बड़ी कमाल की लगती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो जो आपकी स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं बिल्कुल उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है, तो इसका फार्मूला जो है ना वो मेडिकेटेड फार्मूला है। तो ये भी टेंशन दूर हो गई कि भाई आप अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला मतलब ये कि भाई ये एक नाइट क्रीम तो है, बजाहिर नाइट क्रीम है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, आपने कोई महंगी सी स्किन ट्रीटमेंट ले ली हो। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कुल मिलाकर आप लोगों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करते हैं और करती हूँ ना। होता है कि भाई पूरे पाकिस्तान में आप जरा रिसर्च करेंगे या फिर आप जानेंगे ना, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं। और ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स होते हैं ना, इनका ये काम होता है कि भाई अगर आपने देखा होगा ना, बहुत सी खवातीन जो कि महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं, तो उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि उनके जो फेशियल के अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन की एडिशन की गई होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं भाई ज्यादा टाइम से फेशियल कराएं, या फिर फेशियल कराने में टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, आप चाहते हैं बस कोई ऐसा सा प्रोडक्ट हमें बता दे जो हम लगाएं और हमें चुटकियों में निखार मिल जाए, तो बिल्कुल आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम हाजिर खिदमत है जनाब। आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करती है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप हर टाइम लगा सकते हैं, यानी कि आप ऐसा है कि आप सारे स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें, सारे स्किन के मतलब जो आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई, कॉम्बिनेशन टाइप हो गई, ऑयली हो गई, ड्राई हो गई, नॉर्मल हो गई, तो हर स्किन के ऊपर आप आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं। और डी स्किन का यूज करने के फौरन बाद ही जो है ना आप लोगों को रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए अच्छे से मुनासिब से पैसों के अंदर, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जरूर करके देखिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो है ना वो आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि आपने कैसे करना है, लेकिन डी वॉश तो लीजिएगा जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम का जो है ना वो एडिशन की गई है। और हाइलोरोनिक सीरम एडम ना इसके तो उसका ये आपकी वो हमेशा ग्लो करती रहेगी। तो अगर आप भी कोई अच्छा सा फेस को मॉइस्चराइज रखता है, डी स्किन का फेस वॉश ऐड कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि आपकी जो आधी जिंदगी की प्रॉब्लम्स थी ना स्किन से रिलेटेड वो सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट

0: अच्छा भाई, सबने टॉपिक का जवाब बता दिया है, क्या बात है जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, होशियार हो चुके हैं। इंतजार भाई हमारे साथ, इंतजार भाई वालेकुम अस्सलाम, आप भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और नाजिक अली हमें सुन रहे हैं, कहते हैं गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तुम्हारा प्रोग्राम जो अच्छा टॉपिक है फॉलो करो, सही सही वासु भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम वासु भाई, ठीक ठाक है, खुशबाश। अच्छा जैन अली कहते हैं कि नहीं मिला है कोई तुस्सा आज तक मुझको, फिर ये सितम अलग है कि मिला तो तू भी नहीं। वाह वाह वाह वाह। अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि दादा मैडम कह रही है डी स्किन ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है। वही तो दोस्तों, मैडम इस्तेमाल कई तो उनके पसंद अच्छी वही, यानी तहां भी इस्तेमाल करे तमाम की भी डाडी पसंद अच्छी। अच्छा पोस्ट के लाइक कयो था, कौन कयो था, या सिर्फ कमेंट जो बसकार हुआ है।
1: देखो चानक सामोई दो, सांप तुठो घरे मोटी नवी दो,
0: जाए बधा कसम भई।

ओके जी ओके. फहद भाई कहते हैं कि हमने चेहरों को सच समझा, लोग किरदार छुपा कर मिलते हैं. अब बताऊ तांजू जी ओरिजिनल वॉइस आयो. अच्छा अच्छा हानी गा समझो. आई एम नॉट सिंगर. ये तो बड़े ट्रेजेडी करे गाइंदी है. अच्छा नजीबुल्ला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम. मुगल उमरानी चाचा तमा एतरा कमेंट्स भला कया है नहीं, वो भी स्टिकर मोकलिया था थोड़ो रम कयो बाबा मानन ते. सालार अली हमें सुन रहे हैं. सालार को आपका अच्छा सालार बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है. ओके हजार भाई कहते हैं कि तुम्हारी हर बात पर मुझे एतबार है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, मुश्किल वक्तों में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे हर कदम पर मेरा हाथ होगा, परेशान मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करेंगे मिलकर, तुम्हारा हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ ये बात याद रखना. वाह सही वाह.

বাকি করবো বারো আর तव्हां कहिड़ी दुनिया में आयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो तव्हां बि सुहिणा थी वेंदा मीर मुमताज़ जतोई भाई तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो वालेकुम अस्सलाम तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि आहे मोहबतूं प्यारे सोने भाजू ज़ेन कहते हैं कि नहीं मिला है कोई तुस्सा आज तक मुझे अच्छा यो वराए तव्हां करे छॾियो आहे कॉमेंट ॾिसो इन वजह सां न माण्हुनि जा कॉमेंट ऊपर भटकी वेंदा आहिनि हिकु हिकु मोकिलींदा कयो जीअं तव्हांजा सभु कॉमेंट शामिल प्रोग्राम थी सघनि हिदायतुल्ला कहते हैं कि ओके अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं बुझे बुझे से अजीब दिन है ख्वाब है ना ख्याल कोई ना मंजरों में कोई कशिश है ना मौसमों में जमाल कोई हम एक दूजे को अपनी अपनी अधूरी आंखों से देखते हैं हमारे बरसों की चाहतों में उतर रहा है जवाल कोई शायरी छुथा मोकलो भला बुधायो बुधायो डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोई

हांजी वेयो इते ता हम टाइम दे न्यूज़ ब्रेक जो ना खपो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ना वापस जल्दी मोटी तमारी चुंदा कारी नवन जो इते बैठा हो जो हिया मनी ओ हिया मोडांती सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by D is

0: स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
4: ऐं लवाई परदेही वज़ीरनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं बि कयूं। G7 मुल्कनि ईरान खां हुसैन जी हिमायत ख़त्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। गॾियल क़ौमनि में अमेरिका, बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐं जापान जे परदेही वज़ीरनि जो इजलास हुसैन खां फ़ौजी कार्रवायूं करण रोकण, धमकियुनि जो सिलसिलो बंदि करण ऐं ॻाल्हियुनि तरफ़ वापसि अचण जो मुतालबो कयो वियो। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान गॾियल क़ौमनि जे इजलास में शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो। परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ची पहिरें ई न्यूयॉर्क पहुतल। साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे अब्बास इराक़ची चयो त गॾियल क़ौमूं आलमी अमुन ऐं सलामतीअ जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि। आलमी बिरादरीअ ते एतमाद बि ख़त्म थी चुको आहे। इज़राइल में रवानी जंग बदीअ जी भञकड़ी थी रही आहे। तकरार जे निबेरे लाइ तकड़ा कदम ज़रूरी आहिनि। फलस्तीनी बाबति कमेटीअ खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त अमेरिका, मिस्र, कतर ऐं तुर्किया जूं फलस्तीनी मसले ते कोशिशूं सारा जोगियूं आहिनि। गज़ा समेत फलस्तीन जो मसलो हल जो घुर्जाउ आहे। वॾे वज़ीर सैद मुरादली शाह सां ख़ुराक जे आलमी इदारे जे नुमाइंदे अनीता हर्ष जी मुलाक़ात। स्कूलनि में खाधे जी फराहमी, अॻवाट क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ लाइ सहकार वधाइण ते ग़ौर कयो वियो। सिंध हुकूमत ऐं गॾियल क़ौमनि जी ख़ुराक बाबति आलमी इदारे विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मुरादली शाह चयो त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबब सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़ितनि में शामिल आहे। ग़िज़ाई खोट खे मुंहुं ॾे ऐं स्कूलनि में हाज़िर बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियाद रखियो पियो वञे। मीरपुर माथेलो वेझो ॿिनि धुरियुनि में संघावती तकरार सां झेड़ो, टे ॼणा क़तल, पंज ज़ख़्मी। ॻोठ बागो ड्रो में मरणास बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में संघावती तकरार सां झेड़ो थियो। झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि बिलावल मरणास वकार ऐं मुख्तियार मरणास मारिजी विया। ज़ख़्मी में जलाल निसार, फ़क़ीर मोहम्मद परियल ऐं फैज़ मोहम्मद मकतूलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल। गुलाम हैदर वेझो पढ़ियल लारी जो घर मां फाओ लॻल लाश हथायो। वारसनि जो सहुरनि ते क़तल करण जो इल्ज़ाम। ॻोठ जियो कोली में रवीना ज़ाल केवल कोली जो घर मां लाश मिलियो आहे। पुलिस ऐं पीउ ऐं चाचे पारां मुड़ुस ऐं सहुरनि ते तशदुद करे क़तल करण जो इल्ज़ाम। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कंबर जे इलाइक़े कुबो सैद खान भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ अची वई आहे। नौजवान मंदूर चांडियो जो गुज़िरियल ॾींहुं सिसी खां धार थियल लाश मिलियो हो। खिपरो वेझो नारा केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथायो आहे। अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। डंग पतण वटां नारा केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश मिलियो। सुञाणप न थी सघी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
6: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ऐं इलाज कंहिंसां कंदा आहिनि। अलहमदुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अव्हां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 03062555

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, और बहुत ज्यादा जरूरी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट लगाने चाहिए कौन से नहीं लगाने चाहिए। मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट देकर हमारा दिमाग ही घूम जाता है। तो अगर कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे भी पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद हमारे चेहरे पर वही खूबसूरती हमें मिल सकती है जो कि हम हमेशा से हासिल करना चाहते थे, और उन्हीं प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपके खूबसूरत से चेहरे पर चार चांद लाने का काम करता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, मर्द हजरात है, खवातीन है, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है। और डी ओके 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप नाइट क्रीम के तौर पर यूज तो कर सकते हैं लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ना वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, आपने कोई महंगी सी ट्रीटमेंट ले ली हो स्किन की। क्योंकि यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना आप लोगों के लिए वाइटामिन ई बीट्स एड किए गए हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, कार्बोटीन है, कॉज ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें जो है ना सुनकर मतलब ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि भाई ये प्रोडक्ट तो बड़ा ही महंगा होगा, तो कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ये मुनासिब सी कीमतों में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। आप बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। और जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर राबता करते रहिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो सके। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आपकी खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का जो एहसास होगा ना वो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है, आपकी स्किन को नरम और खूबसूरत बना देगा, आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा, आपके चेहरे पर जो है ना इतना अच्छा से निखार आ जाएगा, आपके चेहरे पर जो रिंकल्स हैं, फ्रेकल्स हैं, क्रेकल्स वगैरह हैं, आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, एक्नी प्रॉब्लम है या जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आपके चेहरे पर मौजूद होती है ना तमाम चीजों से आपको छुटकारा देगा। वो मॉइस्चराइज रखते चेहरे को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल, खूबसूरत और पुरकशिश बनाने का काम करती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं, जी दिल खोल कर कीजिए और जरा अपने खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए। और साथ साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं तो क्या ही बात है जनाब, लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना इसकी क्या ही मैं बात बताऊँ आप लोगों को, इतना प्रीमियम क्वालिटी का ये फेस वॉश है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि भाई साहब ये क्या चीज बता दी है हमें, इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद था और हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। तो भाई अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। और हाँ, डायल करते रहिए 0332738439। बुरी ट्रेस हो बच्ची है 73-8-4-3-0-9। ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907। ॿुड़ी 312-53 ॿुड़ी 312-25-50। भई मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया, नंबर दोबारा से नोट कीजिए 312-50-25-970। ये नंबर जो आए तुम डायल करे सको था, नंबर से तुम कॉल भी करे सको था, तुम मैसेज भी करे सको था, इनन का मालूमात भी वठी सको था बाबा प्राइस छा है या फिर किथा असा वनी परचेज करे सको था, असा के करीबी जनरल स्टोर जो नालो बुधायो, इन का अलावा जेका भी मालूमात तुम के मतलब असानी प्रोग्राम में न मिली सगी आहे तो वहा तुम इन नंबर से रातो करे पांजी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल भी कराए सको था, आई मालूमात भी हासिल करे सको था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए। ओके, सो यहाँ पर जितने भी खूबसूरत मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जो कोई आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, इस सवाल का आपने जवाब

देना है और जरा मुझे बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और कितनी सारी प्यारी समाते हैं जो भाई हमारे प्रोग्राम को सुनते जा रहे हैं। और उसके अलावा

ओके सो जितने भी लोग आपको जरा लाइक और शेयर करते जाइए, बाकी आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं वो शामले प्रोग्राम रखे। बहुत ही प्यारी हमारी लिसनर हमारे साथ मौजूद है, वो बड़ी भाई प्यार से और शौक से हमारा प्रोग्राम सुनती है और वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और वॉश भी यूज करती है, और भाई एक खत्म हो जाता है तो वो जाकर दूसरा परचेज कराती है। और ये हमारे साथ मौजूद है आयशा मेमर, हमारी बहुत ही प्यारी और सुंदर सी लिसनर है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे आयशा, आप ऐसे ही हंसी मुस्कुराती रहे, और बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। रेगुलर आप हमारी मतलब लिसनर भी हैं और आप हमारा प्रोडक्ट भी परचेज करती हैं, सो थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुनती हैं, ढेर सारा प्यार आपके लिए, और इसी के साथ साथ ऐसे ही प्रोग्राम को पसंद करती रहें और शामले प्रोग्राम होती रहें। अच्छा, और हमारे साथ हमारी फजली भी प्रोग्राम में मौजूद है, फजली आपको भी वेलकम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम के साथ, और साथ साथ ये हमारे साथ जी मौजूद हैं इमदाद जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई, भाइयों को वेलकम कहते हैं। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला महर भाईजान जो हैं ये भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अब्दुल्ला भाईजान बहुत बढ़िया ऐसे ही इस्तेमाल करते रहिए। और शहर दादू खां, इमदाद अली जतोई, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई और किफायतुल्ला जतोई, फारूक हैदर जतोई, भावनजू मोबतुआन तहां प्रोग्राम बुधो पया, इन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल भी कयो पया। ये हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम, वेलकम भाऊ। अब हेल्थ कैसी है? ठीक है, बस ये पूछने के लिए मैसेज किया, ख्याल रखिए अपना, ओके, और दवाई टाइम से ले जी ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जयपाल भाई हमारे साथ मौजूद है और तबीयत काफी बेहतर है, बस ये थोड़ा गला अभी तक जरा अपनी जगह पर नहीं आया, और ये हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मदर, प्यारी आरजे कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसी हैं। मायरा हमारे साथ मौजूद है, मायरा आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही हैं, क्या बात है मायरा, ऐसे ही इस्तेमाल करती रही हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा चुकी हैं, ये भी अच्छी बात है। मंजूर अली खास के लिए मैं सुन रही हूँ, गोठ दाबूचा खास के लिए लग झंडो मरी, ओके जी झंडो मरी खां तुम प्रोग्राम बुध पाया, झंडो मरी में भी तुम्हें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिली सगन था, बस तुम थोड़ा मालूम वो अगर न भी मिलन था तुम्हें नंबर बुधाया ना, पर नंबर ते तमा रातो करी वठो, आई पाजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो। अच्छा, इरशाद अली लगारी हमारे साथ हैं फ्रॉम मीरपुर खास, कहते नियर चूना फैक्ट्री, इंसान दुख नहीं देते, इंसानों से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं, नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। वैसे इरशाद भाई आपने क्या ही बात इरशाद कर दी है, बहुत बढ़िया थैंक यू, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, मुनव्वर अली मुगल भाई हमारे साथ, कहते सलाम बहना, उर्दू सिंधी गड गड मजो अच्छी वयो ये बाबू भाई का स्टाइल है मुनव्वर भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। अताउल्ला मरी हमारे साथ है विलेज रमजान मरी मीरपुर खास से, ओके क्या बात है, मीरपुर खास वाले लोगों का भाई क्या कहना, वो बड़े हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बड़ी मोहब्बतों से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, बाकी के बुधो तहां जी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थिया कोन, मुखे यो भी जरूर बुधाए जो जे खबर पई दिल जाए हो जे त बाबा हां ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो था

भाई रसो ना रसो ना, रुठल भला नायो लगंदा, खिल भोग मस्ती मजाक में रहंदा कयो, जिंदगी दाढ़ी खूब

खूबसूरत आहे ऐं खूबसूरत तरीक़े सां ज़िंदगी खे इंजॉय कंदा कयो ऐं पाण खे खूबसूरत बणायो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बतूल मेमन हमारे साथ ही बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ही आपका गाना लगाते हैं जी मुझे मिल गया है आपका गाना और फहीम भाई कहते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा शर्मीला है वाकई वाकई और नजर मोहम्मद भट्टी भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है सैफुल्ला खोसू भाई हमें सुन रहे कहते हैं शो कहाँ से हो रहा है शो जी हो रहा है लाड़काना से बाकी हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी मेहरापुर मातली नूरियाबाद ये सारे लोग मौजूद है सारे सिटीज में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है तो सबको वेलकम हो गया और निदड़ी कहती है कि मतलब ये वॉइस तुम्हारी फेक है मतलब कुछ ऐसा भी नहीं है अच्छा हबीबुल्ला थेबू भाई वालेकुम अस्सलाम मुख्तार लाशारी भाई के लिए आज के सवाल का जवाब है ओके अली रजा लगारी भाई शमन का गाना सुनाते हैं थोड़ा सब्र कीजिए और सर इरफान हमारे साथ मौजूद है महर इरफान सियाल साहब कहते हैं नाइस होस्टिंग मैम आज थैंक यू वेरी मच सर वेलकम सर अनवर भाई कहते हैं कि तव्हांजी आवाज़ में शायरी सुठी लॻंदी आहे बाक़ी शायरी जा मौज़ू उहे कम त शायरनि जो आहे असां कहिड़ा ख़ुदि शायर आहियूं बाक़ी शायर ॼाणे ऐं शायरी ॼाणे ऐं शायर ॼाणे सही सही हाणे ॻाल्हि समुझ में आई और हनीफ अलबलोची कहते हैं कि उसको फुर्सत ही नहीं वक़्त निकाले मौसिन उसे होते हैं भला ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मौसिन याद के दश्त में फटता हूँ मैं नंगे पाँव आके देख पाँव के छाले मौसिन क्या बात है मौसिन को बोलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा ले और रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम ठीक ठाक है प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं डी स्किन मेरे शहर में नहीं मिल रही है अवेलेबल करा दो आप भी गिफ्ट नहीं भेजती रमजान मरी आपका भाई रमजान भाई आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं बताएं तो आपके करीबी जनरल स्टोर पर हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा देते हैं ठीक है अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं सिडो मेरी MP3 खराब हो गई है मैं आपका शो मोबाइल पे सुन रहा हूँ प्लीज आप दुआ करें MP3 बन जाए ताकि मैं आपको लंबी आवाज में सुनूं कम आवाज में मजा नहीं आता आपके शो का जी जी आपकी MP3 बन जाएगी और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं अच्छा रुखसार मरी भी हमें सुन रही है रुखसार मरी बहुत शुक्रिया थैंक यू आप हमारे साथ हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है नहीं बताइएगा अली दिना भाई हमें कश्मीर से सुन रहे हैं और मुलायर अमीर बख्श हमें सुन रहे हैं

कि अॼु मां कोशिशि कई आहे पंहिंजी प्लेलिस्ट जेका आहे उहा सिंधी गाननि सां ज़रा भरी वञे. सो सिंधी गाना अॼु जी प्लेलिस्ट में ॿुधंदासीं. ख़बरदार के उर्दू गाने जी फरमाइश कई.

सोन त खैर तव्हां वठो जॾहिं, पर तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा, उन खे चवेसि त बाबा हाणे जो हाणी आणे ॾे मूंखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु स्टार्ट कयो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ सफ़ा घणी फ़ाइदेमंद आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे तव्हां सफ़ा सुहिणा सुहिणा थी वेंदा, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां हर कोई इस्तेमालु करे सघो था, यानी मर्द हज़रात बि लॻाए सघो था ऐं ख़वातीन बि लॻाए सघो था। सो लॻायो बाबा ऐं पंहिंजे चहिरे खे चमकायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। अच्छा माण्हू छो चवंदा त लाड़काने जो सोन भलो न आहे हूंदो? मां इलाही माण्हुनि खां ॿुधो आहे चवंदा लाड़काने जो सोन भलो न आहे हूंदो। हा वाक़ई हक़ीक़त में ॿुधायो त मूंखे ख़बर पवे।

Well, अच्छा दर्द दिल लगती है कि एक ही नजर में आप हमारे मेहमान बन गए, दो चार बातें क्या कर ली, सारा जहां बन गए, पास रहकर भी लोग हमें अपना ना बना पाए और दूर रहकर भी आप हमारी जान बन गए, अल्लाह रे। थैंक यू साजिद अली भाई, के थे हर सवाल जो जवाब। जी बिल्कुल भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। मुझे बताइए डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या अभी सिर्फ सोच रहे हैं। अमानुल्ला महर हमारे साथ ही, अमानुल्ला महर भाई वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। अच्छा अलीशा कहती हैं कि थरू शाह से मेरा भाई सदाम हुसैन चांदियो आपका शो सुन रहा है। ओके आप दोनों को वेलकम कहते हैं। दर्दे दिल भी आप टॉपिक का जवाब दे चुकी हैं। ओके जी ओके। तालिब मरी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया तालिब भाई, आपको वेलकम कहते हैं। ओके जी रहमान अली शंपानी भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। नजर मोहम्मद भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम, मटियारी का दास प्रोग्राम बुध पया। अच्छा अदो चए तो अदा सर खालिद जी शादी आहे छा अड़ा गाना प्ले कया थी, शादी आ तो घोट नजर को। हाँ चाचे जी शादी कराया था भला, इन में शायद एसन अली बुक्ति भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपको वेलकम हो गया। रशीद कोसो भाई तवांगे प्रोग्राम वणे पयो, थैंक यू। हजार भाई कहते सिस्टर में आपका शो शारजा से सुन रहा हूँ, जबरदस्त शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। निधरी कहती है कि सिंधी सॉन्ग्स के साथ वो सॉन्ग भी लगा दो, हाजिर हाजिर। रशीद भाई कहते हैं कि हैदराबाद में क्रीम मिल रही है और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ओके क्रीम का नाम तो बताएं, कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं।

0: हाँ जी, तो यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथी जी पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू है।
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: लाड़काने वास खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ी के बीमारियों जो माहिर इतने मोहिड़ा डडर मल्लो पुरानी खारश वार चरो पुरानो फट चित्री लैशमिनियासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब थियण वारन जा मसला एलर्जी औरतुन के चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वजे।

0: याद रखंदा हर जुमे ते चमड़ीअ जे मरीज़नि जी मुफ़्त चकास कई वेंदी। डॉक्टर अजीत कुमार चमड़ीअ जे बीमारियुनि जो माहिर। एड्रेस अली हॉस्पिटल वगड़ रोड लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं ऐं आचर ते क्लिनिक बंदि रहंदी। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03124344689।
1: डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो MBBS FCPS तजुर्बेकार ऐं माहिर जनरल फिजिशियन हिते।
2: महरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा।

बिल्कुल जी, दिल चए थी तू जो नालो मां सुकून रखी छॾियां। वाकई कुझु माण्हू असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि जेके असांजी ज़िंदगी में सुकून जो कमु कंदा आहिनि। चलो अगरि तव्हांजी लाइफ में बि कोई अहिड़ो मौजूदु आहे त हुनजो क़दुरु कयो ऐं हुनखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कयो। तो बिल्कुल सुना वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं वाइट स्टेशन। डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे बताइए जरा, ताकि मुझे पता चले कि भाई जितनी भी ये खूबसूरत

लोग हमारे आस पास घूम रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना भाई, खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द का मुनासिब ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, और ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। आपकी जल्द को नरम और मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जनाब, और अपनी स्किन केयर को ना तवज्जो देना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई मरतबा जब हम स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते तो उसी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जब आपकी स्किन खराब हो चुकी होती है और बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तब जाकर आपको रियलाइज होता है कि भाई अब हमें चेहरे का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कैसे रखें वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक बन जाता है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं तो लाजमी कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो है ना स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने मिलकर तैयार किया है, तो कोई भी साइड इफेक्ट का इश्यू ही नहीं होगा। आपकी स्किन किसी भी टोन की ही आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी दिल खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हजरात हैं खवातीन हर कोई लगा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, तो ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं ना ये पूरे पाकिस्तान में अगर आप रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट्स को लेकर तो भाई पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स भी इनकी एडिशन की गई है। और ये जो है ना ये इतनी प्रीमियम क्वालिटी की चीजें होती हैं कि ये अगर आप देखेंगे ना भाई जो खवातीन महंगे महंगे फेशियल्स कराती हैं बहुत महंगे हजारों वाले, उन फेशियल्स के अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स को ऐड किया जाता है, तो बिल्कुल ये 2-in-1 फार्मूला होने वाला है, यानी कि आपकी नाइट क्रीम तो है ही है लेकिन ये आपको रिजल्ट तो देगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम कि ऐसे देगी कि भाई आपने जैसे कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके सिर्फ 2 रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छे खासे रिजल्ट आ चुके होंगे, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाहर के ममालकात में भी आपको मिल सकती है। तो जाइए और परचेज कीजिए और खूबसूरतियाँ हासिल कीजिए, और जनाब डायल करते रहिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50 25 970 अब यो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 नंबर डायल कयो आई पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो। छो तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो एंड डी स्किन जो फेस वॉश न लगायो ये मजो नहीं दो ना। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो तो गडो गड डी स्किन जो फेस वॉश भी लाजमी वठो, बई चीजों गड गड इस्तेमाल कयो जे तांके खूबसूरती मिले मुकम्मल एंड ता सोना हो जो।

0: वाह साईं वाह शमन जो गानो एंजॉय कयूं पया ई प्रोग्राम में तवा के चोंदा भली करी आया प्रोग्राम तवा जो पांजो आए जितां जितां तवा सागे सोणा मानो बुधो पया सबनी जो मोहब्बतु आहिन भाऊ एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो भाऊ सोणा सोणा थी वणो जी है। अच्छा अली डना भाई में सुन रही है कश्मीर से, थैंक यू के तई भाईजान को अमानुल्लाह महरा को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है कि वाओ माय फेवरेट सॉन्ग शेला गुल वाला फरमाइश करने वाली थी। अच्छा देखो देखो मैंने पहले लगा लिया।
1: मान नवाजिया में मुझे शहर जमा हूं।
0: अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं पता नहीं एक चेन गिफ्ट करो फिर बताऊंगा।
1: मुझे शहर जमा हूं।
0: अब मैं क्या ही बोलूं

अलाह घोट फेशियल कराइण वियो आहे घोट खे चयो बाबा फेशियल बेशियल खे छॾियो हाणे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो फेशियल में वॾो टाइम लॻंदो आहे पैसा बि इलाही लॻंदा आहिनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बसि परचेज करे अचो ऐं तव्हां इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सफ़ा मिंटनि में बल्कि ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो था त तव्हांखे भला रिज़ल्ट मिली वेंदा सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो छॾियो इन्हनि सभिनी चीज़ुनि खे अच्छा रमज़ान भाई हमारे साथ है रमज़ान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है निसार महर में सुन रहे हैं हाय तालिब मेरी भाई हमारे साथ है बहुत शुक्रिया तालिब भाई रिजवान अली कहते हैं बहना कैसी हो येस्टरडे आपसे रिक्वेस्ट किया था आप अच्छा गाना आपका रह गया था चलें ठीक है मैं देखती हूँ गाना लगा देंगे आपका और कहते हैं कि फकत निगाह से होता है फैसला दिल का ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी का क्या है वाह वाह वाह वाह

अच्छा साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते शाहिद बबर का सॉन्ग फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से आप हमारा शो सुन रहे हैं। भाई को वेलकम कहते हैं लाड़काना से। भाई आप मार्केट से जो है ना डे स्किन ब्यूटी क्रीम भी परचेज कीजिएगा। डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये तो बताइए। गाने वाने तो हम सुनते रहेंगे। हजार भाई कहते हैं कि बिल्कुल सिस्टर अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए लेकिन आजकल लोग अच्छे लोगों की कदर नहीं कर रहे हैं। पर काई गाल को ने मां ताजी कदर कंदम पर शर्ता तांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करनो पंदो ओ ये जियो करे इससे।

अच्छा हनीफ अलबलोची कहते मैम गोल्ड सऊदी अरबिया का बेस्ट है। अच्छा सही है। साजिद कहते हैं बहुत बहुत अच्छी है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम, स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, वाकई आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। हजार भाई कहते हैं क्या अच्छा शायद मिल सकती हैं, आप जाइएगा और जरा मालूमात लीजिएगा, क्या पता मिल ही जाए। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं मेरा टॉपिक वाला कमेंट रीड नहीं हुआ, मैंने कर लिया।

वाह साईं भाई तव्हांजो मोहबतूं हूंदियूं आहिनि बाबा जेके प्रोग्राम में तव्हां सपोर्ट कंदा आहियो प्रोग्राम में तव्हां साथ ॾींदा आहियो माशाल्लाह तव्हांजा इलाही सारा सुठा सुठा फीडबैक्स मिलिया असांखे ऐं खोड़ सारे माण्हुनि असांजी पोस्ट खे लाइक बि कयो आहे ऐं शेयर बि करे छॾियो आहे ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल बि करे रहिया आहियो ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल जेके बि माण्हू कयो था असांखे फीडबैक ज़रूर ॾींदा कयो जेके बि ॿुधंदड़ माण्हू आहिनि उन्हनि खे ख़बर पइजी वञे त बाबा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो जेको इस्तेमाल आहे उहो अगरि असां कयूं त असांखे बि भला रिज़ल्ट मिली सघंदा छो त कुझु माण्हू इन चीज़ में कंफ्यूज़ हूंदा आहिनि त असांजी स्किन त थोरी सेंसिटिव आहे कोई प्रोडक्ट सूटी न आहे कंदो त असां लॻायूं या न लॻायूं त तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जेके आहिनि हे सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहिनि ऐं सभु माण्हू मतिलबु सभु माण्हू लॻाए सघनि था चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज़ कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो।

भाई बहुत ही प्यारा ऐसा गाना एंजॉय कर रहे हो, गाना एंजॉय करेंगे जनाब, लेकिन साथ साथ आप लोगों को बताते चलेंगे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप अच्छी अच्छी बातें जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे तो कितने सारे आपको फायदे मिलने वाले, लेकिन उन लोगों को जरा बताएं जो लोग डी स्किन का फेस वॉश यूज करने वाले हैं, तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भाई अवेलेबल हो चुका है, हर जगह से आप जाकर परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना यहाँ की स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वैसे ही होता है भाई अगर आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं तब भी आपकी स्किन में बहुत सारी चीजें जो है ना वो अच्छा वर्क करती है, लेकिन ये भी चीज होती है कि सिर्फ अपने चेहरे पर जो है ना वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगाना भी काफी नहीं होता, अगर आपके चेहरे पर कोई अच्छा सा प्रोडक्ट सूट नहीं करता या फिर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए जिसका इस्तेमाल करें, और ऐसी चक्करों में आप प्रोडक्ट जो है वो चेंज करते रहते हैं, कभी कौन सा साबुन कभी कौन सा फेस वॉश, तो जनाब इन चीजों से जरा छुटकारा हासिल कीजिए, जरा जिंदगी में सांस की सुकून की सांस लीजिए, और यहाँ पर आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश आ चुका है। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये इतना जबरदस्त और प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश है जिसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगा, और जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन का फेस वॉश तो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को डीपली जो है ना वो क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेट रखता है। तो बहुत सारे आपने फेस वॉश ट्राई करके देखे होंगे, लेकिन जब आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करेंगे ना तो बात ही अलग होगी, और आपके चेहरे पर जो निखार आएगा खूबसूरती आएगी उसकी तो भाई क्या ही बात होगी। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ये जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम क्रीमें नहीं लगा पाते, तो अगर आप क्रीमें नहीं लगा पाते या अभी तक आपकी उम्र नहीं हुई है क्रीमें लगाने की तो आप ऐसा कीजिए डी स्किन फेस वॉश का यूज कीजिए, और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लाजमी इस्तेमाल कीजिए, और जरा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए और खूबसूरती। साजिद हुसैन कहते हैं जी अच्छी क्रीम है बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम। भाई आपके मच प्यारे भाई हिदायत उल्लाह कहते हैं सिद्रा मैंने सुना है, जी जी बिल्कुल आपने सही सुना है, ये मैंने भी देखा था और मैं मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो चुकी थी कि भाई हाँ मेरा फेवरेट ड्रामा आने वाला है तो अच्छी बात है। हजार भाई कहते हैं कि सिस्टर आपको शाम 5 बजे वाले प्रोग्राम सॉन्ग की रुक आपका गाना चलाऊंगी, दिल से आप फरमाइश किया करें आपका गाना दिल से लगाया जाएगा। और फहीम भाई कहते हैं फेस वॉश वाला मैं हूँ अदा, बिल्कुल आप फेस वॉश लगाइए और अच्छे से लगाइए, कहते हैं कि अदा जब आपका शो सुनता हूँ तब हमेशा सबकी कॉल आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा क्यों बा करते हैं? अरे उनको बोल दिया करे कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे कॉल नहीं किया करे ये टाइम जो है ना ये हमारा है बस, तो हमें दिया करे। और निधि कहती हैं कि बाकी

के साथ साथ यहाँ पर हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है। जाते जाते आप लोगों को जरा बता कर जाऊंगी कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ये आप कहीं से भी सकते हैं, आपके लिए हमने हर जगह अवेलेबल करा दिया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई ऐसा एरिया रह चुका है जहाँ पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आपको नंबर जो बताए जाते हैं प्रोग्राम में उनके ऊपर रब्ता जरूर किया करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए, आपको आसानी हो। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाए, वहाँ से आप इस वॉश और इसी की मुलाकात मुझे पंच बजे वाले प्रोग्राम में। तो पांच ओ हिडो सरो खया रखना माजरत मोकलानी ना है सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल।

0: इट्स 3।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
0: It's 3 PM.
3: Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by
4: GFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yuya Granular. Mitiye jo.
7: ये कि हम रिलीफ देना चाहते हैं, बस थोड़ा सा आप सब्र करें। देखें, हम आखिरी बस ये हो सकता है कि ये बात भी जाहिर खुद मेरे लिए बहुत तकलीफ दे कि मैं कहूं कि जनाब ये मोमेंट क्यों नहीं आए थे। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हम तो पूरे इस इंतखाबी अमल के हवाले से एक वाज़ेह राय रखते हैं फॉर्म 47 के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि चंद दिन जो मुलाकात के दरमियान बाकी हैं उसमें हम मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। हम उसी तरह से तैयारियां अपनी जारी रखे हुए हैं और अपनी इन तैयारियों को मजीद बढ़ा रहे हैं और चारों तरफ से बढ़ा रहे हैं। और अगर हमारे किसी

0: फिर किस्मत का फैसला समझकर हम आगे बढ़ जाते हैं।
1: सुन लिया?
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मधुर।
4: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है
1: जी नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम, 5 डे ब्यूटी प्लान, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम या वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा होते ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GA FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया ऐं मिस्री परडे॒ही वज़ीरनि जी न्यूयॉर्क में मुलाक़ात खिते जी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं खिते जी सूरतहाल ऐं अमन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़दार सऊदी ऐं लिबाई परडे॒ही वज़ीरनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ात G7 मुल्क ईरान खां हुसैन जी हिमायत ख़त्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। गडि॒यल क़ौमनि में अमेरिका, बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐं जापान जे परडे॒ही वज़ीरनि जो इजलास हुसैन खां फ़ौजी कार्रवाइयूं रोकण, धमकियुनि जो सिलसिलो बंदि करण ऐं ॻाल्हियुनि तरफ़ वापस अचण जो मुतालबो कयो वियो। ईरानी सदर मसूद पज़दीशान गडि॒यल क़ौमनि जे इजलास में शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो। परडे॒ही वज़ीर पहिरें ई न्यूयॉर्क पहुतल, साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त गडि॒यल क़ौमनि जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि। आलमी हालात बि ख़त्म थी चुको आहे। ईरानी पार्लियर बाकिर कालेबाव, ईरानी मिज़ाइल, कंहिं बि हंधि ते टारा ट्रम्प पंहिंजी ताक़त ईरान ते मड़े नथो सघे। ईरान जमी बीठल आहे।
4: के दौरे पे भी उन्हें आना चाहिए और जरा जल्दी जल्दी आना चाहिए और वो तशरीफ लाए और उनके साथ हम जो है वो बात करेंगे और उस दिन अगर वो हमें बताते हैं कि ये रिलीफ हम दे रहे हैं तो फबे आप और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास अक्टूबर का पहला हफ्ता भी है, पहला अशरा भी है। हम उसी तरीके से उसी कुव्वत से अपने

0: तैयारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: खुशखबर हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला या बीमारी पुरा त इलाज बादशाह में सिपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर मन अल्फा होम्योपैथिक कंसल्ट शाह होम्योपैथिक इलाज होम्योपैथिक तरीके से कई मरीज सेहतिया अवां बे माय ॾिसो क्या क्लिनिक में मौजूद आहे। क्लिनिक जो ॾींहुं है हर छंछर ताईं सुबुह जो 10 वगे खां शाम 5 वगे ताईं जो है। एड्रेस पते क्लिनिक पुरानी सब्जी मंडी पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: GAFM नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो का बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो। छो तो ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GA FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: कितने साल भाग्यल शायद दहशतगर्द मारजी व्या मारजी वेल दहशतगर्द वटा हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वियो दहशतगर्दन के शिकस्त ॾियण ऐं मुल्क में जटादार अमन जे क़याम लाइ पुरज़म आहे वतन लाइ शहीदनि जी ॾिनल क़ुर्बानीनि खे विसारे नथो सघिजे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं पिशावर गैरेजनि जे दौरे दौरान ॻाल्हियूं ISPR मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां कोर हेडक्वार्टर्स पिशावर जो दौरो कयो फोर्सिस खे हर वक़्तु चौकस रहण ऐं ऑपरेशनल तयारी बरकरार रखण जी हिदायत कई फील्ड मार्शल खे KPJ सिक्योरिटी सूरतहाल ते ब्रीफिंग ॾिनी वई सूबे में जारी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन सरहदी इंतज़ामनि ऐं फार्मेशन्स जी ऑपरेशनल तयारियुनि बाबति बि आगाह कयो वियो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीदनि जी यादगार ते हाज़िरी भरी ऐं भेटा पेश कई पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की ऐं मिस्री परदेही वज़ीरनि जी न्यूयॉर्क में मुलाक़ात ख़िते जी सूरतहाल समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं ख़िते जी सूरतहाल ऐं अमन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार सऊदी ऐं लीबियाई परदेही वज़ीरनि सां अलॻि अलॻि मुलाक़ातूं बि कयूं G7 मुल्कनि हुसियन जी हिमायत ख़तम करण जो मुतालबो करे छॾियो गॾियल क़ौमनि में अमरीका बरतानिया कैनेडा फ्रांस जर्मनी इटली ऐं जापान जी परदेही वज़ीरनि जो इजलास हुसियन खां फ़ौजी कार्रवाइयूं रोकण धमकियुनि जो सिलसिलो बंदि करण ऐं गालियुनि तरफ़ वापसि अचण जो मुतालबो कयो वियो ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान गॾियल क़ौमनि जे इजलास में न्यूयॉर्क रवानो परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची पहिरीं न्यूयॉर्क पहुतल साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त गॾियल क़ौमूं आलमी अमन ऐं सलामती जो तहफ़ करण में नाकाम थियूं आहिनि आलमी इदारे ते एतमाद बि ख़तम थी चुको आहे ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालीपाफ चयो आहे त हाणे ईरानी मिज़ाइल दुनिया में कंहिं बि हंध ते टारगेट खे निशानो बणाए सघनि था ट्रंप पंहिंजी ताक़त ईरान ते मड़ी नथो सघे ईरान जमी बीठल आहे रिलीफ न मिलण जी सूरत में अक्टूबर में ॿीहर मार्च करण जो ऐलान जवाहर इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त एहतजाज मुलतवी करण जो फ़ैसिलो वज़ीर आज़म जी दरख़्वास्त ते कयो

आहे। जमात इस्लामी जी क्यादत वतन वापसीअ ते वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कंदी। मुलाक़ात दौरान लेवी ते अवाम खे लीफ न ॾिनो वियो त अक्टूबर में ॿीहर लॉन्ग मार्च कंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत जो धरणे वारे मामले ते पीटीआई सां ॻाल्हियूं करण खां इनकार। वफ़ाक़ी वज़ीर ताला तारा चयो आहे त पीटीआई वारनि जी ॻाल्हियुनि बाबति तारीख़ सुठी न आहे त कंहिं सां ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि। हुननि सां ॻाल्हियूं करण जो को फ़ाइदो बि न आहे। मुबकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पानी जूं बैनर पार्टी ते कब्ज़े करण लाइ वॾो हादसो चाहिनि थियूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हुकुम सभिनी खे मञणो पवंदो, न मञीदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी।

वॾे वज़ीर महद अली शाह सां ख़ुराक जे आलमी इदारे जी नुमाइंदी अनीता हर्ष जी मुलाक़ात। स्कूलनि में फ्राहमी अॻुवाट कदमनि ऐं समाजी सरकार वधाइण ते सिंध हुकूमत ऐं गॾियल क़ौमनि जे ख़ुराक बाबति आलमी इदारे विच में सरकार वधाइण ते इतफ़ाक़। महद अली शाह चयो त सिंध मौसमियाती तब्दीली सबब सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ ख़िततनि में शामिल आहे। फज़ाई कोर्ट खे मुंहुं ॾेई ऐं स्कूलनि में हाज़िरी बहितर बणाए मज़बूत सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। मीरपुर मातेलो वेझो ॿिनि ज़िलनि में सगावती तकरार सां जहिड़ो टे ॼणा क़तल, पंज ज़ख़्मी। मोट बागू ड्रहो में मरदास बिरादरी जी ॿिनि ज़िलनि में सगावती तकरार सां जहिड़ो थियो। जहिड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि बिलावल मरदास वकार ऐं मुख़्तियार मारिजी विया। मक़तूलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। नंदो गुलाम हैदर वेझो पढ़ियल नारी जो घर मां फाहो लॻल लाश आहे। वारिसनि जो साहुरनि ते क़तल करण जो इल्ज़ाम। घोट जियो कूली में रवीना ज़ाल केवल कूली जो घर मां लाश मिलियो। पीउ ऐं चाचे पारां मुड़ुस ऐं साहुरनि ते नारी खे तशद्दुद करे क़तल करण जो इल्ज़ाम। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। कंबर जे इलाइक़े कबोसैद ख़ान भरिसां गुज़िरियल ॾींहुं क़तल कयल नौजवान जे धड़ खां धार कयल सिसी हथ। मंज़ूर चांडियो जो गुज़िरियल ॾींहुं ससी खां धार थियल लाश मिलियो हो। खेतरो वेझो नारा केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकिल। तंग पतण वटां नारा केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश मिलियो, सुञाणप न थी सघे।

0: असल मासूम गुलाब जी गुल साहब साहब कयो मुझे बच्चे के 15 ली भी कोल चाओ उन जी जी जला मां उन जो मां भी नसीबा करी दी तार तक असल जो पेटी में लाश घुमायो लेश लाश पेटी में आयो ना मां डिठो पी डिठो ना अमर उन जो लाश डिठो आखरी दीदार भी जो न कयो पंजन में टल लाया टल में रवानो थी
1: जेके नवा नौजवान शागिर्द बंजन साहब नवा उनके ब्लैकमेल कर उनका पैसा प्रोग्राम के ट्रिप कन था ब्लैकमेल कन था
2: जो घर ना है पर कोस घर बन जी आज यूनिवर्सिटी नवाज शाह जी
3: आऊं इन्हें जेको है सिक्योरिटी चीफ का सवाल तो कया त जेको असा जे शहीद जो कातिल है वो पास आउट हो यूनिवर्सिटी मा त वो उते हॉस्टल में छापियो करे
4: कई एड़ा क्रिमिनल मानू हुंदा जेके ते थी बाहर डो करे जी शटर वठंदा पर असा खबर असा बच्चो दुनिया डिठो आ जुल्म थियो
5: नवाबशाह में कतल थियल कायदे अवाम यूनिवर्सिटी के शागिर्द आकिब आलमाणी के वारिसन यूनिवर्सिटी जामिया चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज के जांच में शामिल करने का मुतालबो कर साधु शाह भरसा एहतजाज केस की शफाफ जांच करने का मुतालबो मकतूल शागिर्द के वारे तयन आकिब के नौजवान के अशफाक गिरोही संदस साथियों बेदर्दी से कतल किया है जैमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी मुलविस है अशफाक गिरोही पास आउट करने बावजूद यूनिवर्सिटी में रहन्द हो शागिर्दन के ब्लैकमेल कन्द हो बेन आकिब के पेंजे आई फोन पैसा वापस घुण से कतल किया है शागिर्द के कतल खिलाफ नवाबशाह में यूनिवर्सिटी शागिर्दन जो एहतजाज कंदकोट में सिंधी इम्कानी विरागी खिलाफ एसटीपी की एहतजाजी रैली कारकुनान एसटीपी ऑफ स्टाफ प्रेस क्लब ताई रैली कढ़ी एहतजाज किया अगवाणन सिंध धरती असि माँ है सिंध के तोड़ वाली साजिश पूरी थे नींदी फेजगंज की कुछड़ियन में पानी की खोट शिदत इख्तियार कर वही फेजगंज एक्शन कमेटी को धरणो चैन वाहन फेजगंज बेहू वाह अली नवाज वाह पंद्रह वाह में पानी की शदीद खोट खिलाफ एक्शन कमेटी पारा मेरान हाईवे खां मुख चौक ते धरणो हयो मुजाहिरन जो ज़री पानी फराहम करण जो मुतालबो करी मीरवा में रेवेन्यू खाते जी बिन मुलाज़िमन पारां बेवा औरत सां वेना ज़ब्ते केस दाख़िल औरत जो रेवेन्यू मुलाज़िमन ते वारिसी सर्टिफिकेट ॾियण बहाने घुराए लजा रट जो निशानो बणाइण जो इल्ज़ाम मुतासिर औरत जी फरियाद तपेदार राजा बोसदार ऐं क्लारक शाहिद कासकेली खिलाफ़ लजा लुट जी FIR दाख़िल मुतासिर औरत मूजिब जवाबदार जिंसी ज्यादती जो निशानो बयान दौरान वीडियो रिकॉर्ड कई ऐं खामोश रहण लाइ धमकियूं डि॒नियूं पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार न कयो
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
8: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वगे खां शाम 5 वगे ताईं जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306-244-7700
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़। ॿुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए एफएम नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हेली बुधे पियो अवां जो तमाम घणी मेहरबानी कुर्बान वेलकम था चऊं तव्हां खे लुटको मोरी खां असांखे ॿुधे थो अब्दुरहमान लगारी ऐं मिठा खान लगारी तालिब हुसैन लगारी अवां जी तमामु घणी महिरबानी अब्दुरहमान ऐं मिठा खान लगारी ॻोठ खां ऐं मिठा खान लगारी लुटको मोरी खां ॿुधो था तमामु घणी मुहबत वञो ऐं भली कार था चऊं तव्हांखे अवां शाद ऐं आबाद हुजो कुर्ब तव्हांजा मज़ी सामाइन ज़बरदस्त ट्रेक आहे गॾु ॿुधूं था उन ट्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ अवां सां गॾु गुज़ारींदासीं अॼु अञा बि घणो वक़्तु पाण गॾु हूंदासीं इनशाला ऐं सवा कलाक जे बाक़ी साथ हूंदो असांजो साथ हूंदो सो मोहबतूं आहिनि जो तव्हां असांखे ॿुधो ॻाल्हियूं कंदासीं तव्हां जल्दी जल्दी सां मैसेज करे वठो ताकी हिननि 15-20 मिंटनि जो साथ पंहिंजो जेको मैसेज वारो उन में तव्हांजो साथ भरपूर शामिल थी वञे त पोइ लिखो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88 81 888 ते मैसेज हाणे मोकिले

अमां जा खोड़ सारा मैसेज जेके शामिल करे वठंदासीं ऐं जेका न्यूज़ हूंदी छहें वगैरह उन खां पोइ असां उनजी कॉल्स बि शामिल कंदासीं। मैसेज पहुतो आहे असांखे, जी हा, अमीर अली खासकेली ऐं सिराज खासकेली जो, मातली टंडो गुलाम अली रोड खां। तमामु घणी मोहबत, अव्हां खे बि चवंदासीं भली कार। ऐं असांखे हाजी सुओ साहब ॿुधे पियो, हाजी सहतो साहब, सॉरी हाजी सहतो साहब असांखे जॉइन करे थो। हाजी सहतो साहब संदसि ॻोठु हाजी सहतो हुतां खां ॿुधे पियो। ऐं शहबाज़ खासकेली ॿुधे पियो, साले सोलंगी ॿुधे पियो, ताज मोहम्मद सहतो ॿुधे पियो, ऐं आसिफ़ सहतो साहब ॿुधे पियो। तमामु घणी महिरबानी। ऐं असद सहतो, थैंक यू जी, ॻोठु आहे हाजी सहतो। अव्हां जा वॾा वॾ, अव्हां जी मोहबतूं अव्हां खे चवंदासीं भली कार। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तारण में चंडु हुजो, खीर में खंडु हुजो, ऐं मेवनि में अंबु हुजो, अव्हां जूं मोहबतूं भली कार चवंदासीं। मुरीद मंगरियो संगराड़ खां नज़ीर अहमद मंगरियो साहब ॿुधे पियो, अव्हां लिखियो त दुनिया जे हर शइ मां फ़ाइदो वठो, पर कंहिंजी मजबूरीअ मां कॾहिं फ़ाइदो न वठिजो। वाह वाह, ज़बरदस्त चूंड अव्हां जी, तमामु घणी महिरबानी। ऐं सरफराज़ राजड़ खिपरो खां असांखे ॿुधे थो, सुमार भील ऐं दिलीप कुमार मेघवाड़ ऐं अब्दुल हकीम बजीर, अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानी। वॾा वॾा अव्हां जा जो अव्हां असांखे जॉइन कयो आहे। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तारण में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो। मोहम्मद अज़ीज़ जरवार असांखे ॿुधे थो, ॻोठु आलम ख़ान जरवार खां, अव्हां जूं बि तमामु घणी महिरबानी। मोहबतूं जो अव्हां असां सां शामिल थी चुका आहियो, बल्कि जुड़ी चुका आहियो, इहा अव्हां जी मोहबत आहे। ऐं असीं अव्हां खे पंहिंजी मोहबतुनि में वेलकम ऐं भली कार चवंदासीं। जी जनाब, असांखे मैसेज पहुतो आहे, ॻोठु आहे मोहम्मद तैयब थेबो, उतां खां हबीबुला थेबो साहब ॿुधे पियो। अव्हां लिखियो, यूनो साहब सलाम, वालेकुम सलाम मिठा भा, थैंक यू, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं जनाब मैसेज पहुतो आहे इस्माइल ख़ान नोतकाणी खां, जी हा जनाब, अलाह बचायो नोतकाणी साहब ॿुधे पियो, मोहबतूं ऐं वॾा वॾा वॼा भलीकार चवंदासीं तव्हांखे। तव्हां असांखे जॉइन करे वरितो आहे, अव्हां असां सां साथ निभायो आहे, अव्हां जे हिन साथ ते असीं अव्हां जा शुक्रगुज़ार आहियूं। तमामु तमामु ऐं तमामु घणियूं महिरबानी। जी जनाब, आपका शो नाइस है, आपका प्रोग्राम नाइस है। अब्दुल्ला असांखे मेहर साहब मेहरापुर मां, शायदि एम पी के, अच्छा एम पी के माना मीरपुर ख़ासि मां यादि कयो। तमामु घणियूं महिरबानी अब्दुल्ला मेहर साहब, अव्हां जो मैसेज पहुतो, ॾाढी ख़ुशी थी। शाद ऐं आबाद हुजो, तारनि में चंड ऐं खीर में खंडु हुजो। ऐं ॻोठु रसूल बख़्श शंभाणीअ खां असांखे जॉइन कयो आहे अब्दुल वहीद ऐवाण, अच्छा जी, अव्हां लिखियो त शो ज़बरदस्त आहे। तमामु घणी महिरबानी, भलीकार चवंदासीं तव्हांखे। वॾा वॾा अव्हां जा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, थैंक यू, ऐं जुग जुग जीओ, अव्हां जे लाइ इहो ई दुआऊं। जी मोज सवीन साज़ आवाज़ साथ ऐं पंहिंजाइप जो जेको साथ आहे, उनजो पंहिंजो रंग हूंदो आहे, पंहिंजो हिसाबु हूंदो आहे। सो तव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी, मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां असांखे यादि कंदा आहियो। ऐं यकीननि जेको ईंदड़ कलाकु हूंदो कॉलुनि वारो। ऐं ॻोठु सोहराब निज़ामाणी खे हिकु दफ़ो ॿीहर मोहबती मंगण निज़ामाणी यादि कयो आहे, नंढड़े अहसान अली निज़ामाणी यादि कयो आहे। तव्हांजूं तमामु घणियूं महिरबानी, थैंक यू। अव्हां चयो त असांजा नाला शामिल कयो, साईं तव्हांजो ही ॿियो मैसेज बि असां शामिल करे छॾियो आहे। तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि, तव्हांजूं मोहबतूं ऐं भली करे आया, जी करे आया। जी जनाब, मैसेज हिकु दफ़ो ॿीहर असांखे घोटकी खां मिलियो आहे। जी जनाब गुलशेर मंगरियो साहब, अव्हां जूं मोहबतूं अव्हां बि शामिल थी चुका आहियो, सोणा साईं किरणे कुर्ब तव्हांजा। ओके जनाब, साज़ ऐं आवाज़ जे साथ में साथ आहे मोहबतुनि जो, ऐं मोहबतुनि जे साथ ते असीं वठी था हलूं अव्हां खे एजाज़ साईंअ जी शायरी ॾांहुं, जितां फरज़ाना बहार जो मिठड़ो आवाज़ हवा में गूंजे थो। गॾिजी ॿुधंदासीं ऐं उन खां पोइ ब्रेक वठंदासीं, बल्कि शायदि असां ब्रेक न वठूं, ब्रेक हली पाण अॻिते वठंदासीं। ग़ुलाम हुसैन जलालाणी जो ॻोठु आहे झोल में, उतां खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॿुधे पियो, महबूब नाज़ जलालाणी ॿुधे थो, ऐं मुख़्तियार नाज़ जलालाणी, आरज़ू असलम जलालाणी, अव्हां जी महिरबानी। मां लिखियो, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। जी जनाब, साज़ आवाज़ साथ में ब्रेक आहे नंढड़ो, ऐं हीउ हूंदो म्यूज़िकल ब्रेक। इन खां पोइ जॾहिं मां वापसि ईंदुसि, तव्हांजे लॻो ज़बरदस्त ट्रैक प्ले कंदुसि, जंहिंखां पोइ असां हलंदासीं ईंदड़ जेको ब्रेक हूंदो उन ॾांहुं, ऐं उन खां पोइ वापसि जॾहिं ईंदासीं त पोइ हूंदियूं अव्हांजो कॉल्स, उनजे लाइ असां अव्हांखे नंबर बि ॿुधाईंदासीं ऐं ॻाल्हियूं कंदासीं अव्हां सां।

मियाण का बाबू मल्हा साहब दे पियो बाबा नी अवा मियाण का सके जॉइन कयो भली कर नफीस खटी म्यापोटा तलहार का बुधे पियो नफीस खटी अवन जो तमाम घणी मेहरबानी आई हाफिज अब्दुल जब्बार खटी हाफिज मोहम्मद हारून खटी असंगे बुधी रहन पाटार बदीन का वेलकम था चौ।

ही आहे GAFM 88 रेडिओ नेटवर्क। हा शो ॿुधो पिया सिंधड़ी जी शाम यूनुस बकारी जे नाम जी जी मुझे नाम न मुझे सलाम अवां जे नाम तपई गजी ही ट्रैक अहमद मुगल जो एंजॉय कयूं था ऐं दर्दी लेने गीत सां न्यूज ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं जितां खां अवां खे ख़बरूं चारियूं ॿुधाईंदासीं ॾेह तोड़े परॾेह जूं उतां वापसि अची बाक़ी ॻाल्हियूं कंदासीं अवां सां टेलीफोन कॉल्स वारियूं पोइ साथ निभाईंदो न। फिलहाल ही दर्दीलो साज ही आवाज़ अॼु त कची हिन खां पोइ न्यूज़ ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं उन खां पोइ कमर्शियल ब्रेक हूंदो ऐं जीअं ई वापसि ईंदासीं पूरी पूरी असांजी नशरियात अव्हां जे नाम हूंदी।

0: उसी तरीके से उसी कुव्वत से अपने इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे।
1: जवाब सलामी पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ इस्लामाबाद आज जारी मार्च मुलतवी कर सको अवाम के लिए न मिलने की सूरत में अक्टूबर में बीहर मार्च करने ऐलान। जमात सलामी जे अमीर हाफिज नईम एहतजाज मुलतवी करने जो फैसलो वजीर आजम की दरख्वास्त कयो है। जमात इस्लामी की क्यादत वतन वापसी से वजीर आजम से मुलाकात कंदी। मुलाकात दौरान लेवी से अवाम के लिए न दिनों वो तो अक्टूबर में बीहर लॉन्ग मार्च कंदी। वफाकी हुकूमत जो धरने वाले मामले से पीटीआई से गालू करने का इनकार। वफाकी वजीर अल्लाह तआला चयो है पीटीआई गालियन बाब खबर ना है कें से गालू करनी गालू कर बैनर पार्टी से कब्जो कर लाए बड़ो हादसो चाहन थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हुक्म सभी के मनो पवो न मजीदड़ खिलाफ कार्रवाई थी। वड़े वजीर मुआद अली शाह से खुराक के आलमी इदारे की नुमाइंदे अनीता हर्ष की मुलाकात। स्कूलों में खाधे की फ्राहमी अगवाट कदमन समाजी तहफुज लाए सहकार बताने से गौर किया। सिंध हुकूमत गडियल कौमन की खुराक बाबत आलमी इदारे विच में सहकार बढ़ाने इतफाक। मुआद अली शाह चो सिंध मौसमियाती तब्दीली सबब सब का मुतासर खत्न में शामिल है। वज़ाई कोर्ट के मुंह दई स्कूलों में हाजिरी बेहतर बनाई मजबूत सिंध जो बुनियाद रखो पो वे। मीरपुर माथेलो वेझो बिन दूरियन में सगावती तकरार था जेड़ो टे जणा कतल पंज जख्मी। कोट पाऊ ड्रो में मरणास बिरादरी जी बिन दूरियन में सगावती तकरार था जेड़ो थियो जेड़े दौरान गोलियों लगण सबब बिलावल वकार मुख्तियार मारजी विया। मकतूलन जा लाश जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: मातली आस पास की आवाम अलै खुशखबरी। मातली होलसेली मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासी। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130।
7: संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: ऐं कंप्यूटर जी महिरबानी ऐं तव्हां जी महिरबानी, तव्हां असांखे ॿुधो पिया। अच्छा, अवां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे?
1: जी नवल राज, दानिश कुमार, सूरज गुल, शंकरलाल मेघवाड़, रुस्तम अली पवार, मलक मोहन बलोच, रामचंद मकवाणो, ॿिया जेके ॿुधनि पिया आहिनि, अब्दुरहमान लगारी, मोहम्मद साले लगारी, सलाम सभिनी
0: खे। वालेकुम असलाम, कुर्ब तव्हांजा साईं, कुर्ब तव्हांजा लख था। आहे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क लाइव कॉल्स जो शो, अवां ॿुध पिया सिंधड़ीअ जी शाम। कॉल अटेंड कयूं, कॉल अटेंड कयूं था, ॾिसंदासीं केरु आहे असां गॾु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम साईं, मलक मोहम्मद बलोच ॻाल्हायां पियो, मिठी थरपारकर खां।
0: जी मोहम्मद मलिक बलोच, कहिड़ा हाल आहिनि? अलहमदुल्ला खुश आयो, ठीकु आहियो। अवां सां गॾु केरु थो ॿुधे?
2: साईं कल्ह बि मां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधो, मगर मूंखे नंबर कोन मिलियो, ऐं अॼु तव्हांजो नंबर मूंखे महिरबानी
0: थियो आहे। न, नंबर महिरबानी न आहे थियो, बसि ईअं आहे त कॉल जीअं खाली थिए थी त ॿिए जी लॻी थी वञे। बसि ट्राए कंदा रहो, ट्राए कंदा रहो, ट्राए कंदा रहो, जीअं अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि ट्राए अगेन, ट्राए अगेन, ट्राए अगेन। अच्छा, तव्हां सां गॾु
2: कामयाबी जी कुंजी आहे। मूं सां गॾु दिलीप कुमार आहे, रोस्तम पवार आहे, मोहम्मद सिद्दीक पारो आहे, रामचंद मकवाणो आहे, ऐं असांजो पुराणो तमामु सीनियर ॿुधंदड़ भाउ लखाधनो जूने जो बि ॿुधे पियो, ऐं जेके दोस्त ॿुधनि पिया सभिनी खे सलाम।
0: वालेकुम असलाम साईं, किरोड़े कुर्ब तव्हांजा, मै मोहबतूं तव्हांजो लख थोरा। मलक मोहम्मद बलोच असांखे जॉइन कयो मिठीअ जे मिठियुनि हवाउनि मां। अॼु जीअं त मूं पहिरीं ज़िक्र कयो त सॼी सिंध में गर्मीअ जी लहर आहे, सामूंडी हवाऊं बंदि आहिनि, ऐं हिकिड़े इतला मौजब मौसमियात खाते जे इतला मौजब त हीअ गर्मी जी लहर 25 तारीख़ ताईं जारी रहंदी, ऐं 25-26 तारीख़ खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता समंड जूं हवाऊं खुलणु शुरू थींदियूं। फ़िलहाल गर्मी ऐं हीट स्ट्रोक जे करे तव्हांखे परेशानी हूंदी तमामु घणी, ख़ासतौर ते उहे शागिर्द जेके इम्तिहानी सेंटरनि में इम्तिहान ॾियनि था। अलाह करे त उते बिजली बरक़रार हुजे त जीअं उन्हनि जा पेपर सही थी सघनि। ऐं हलूं था पाण हिकिड़ी वधीक कॉल ॾांहुं, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी, केरु साहिब ऐं किथां खां?
3: जी साजिद चांडियो थो ॻाल्हायां, कटीपुर खां।
0: ऐं छा हाल आहे चांडियो साहिब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
3: केरु केरु रहमान दाऊं, तव्हां ॿुधायो, ख़ुशि आहियो?
0: अलहमदुल्ला, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
3: जी मैं बाबू अख़्तर रहमान चांडियो, ऐं मैं भाउ सदाम हुसैन चांडियो।
0: जी जी,
3: ऐं ॿियो आदित चांडियो।
0: तमामु घणी मोहबतूं आहिनि तव्हांजूं, तव्हां शामिल थिया, वेलकम चवंदासीं तव्हांखे साईं।
3: थैंक यू।
0: जी जनाब, नंबर आहे 2-324-25-786, यानी 2-3-4-3-5-2-5-7-8-6 इन नंबर ते कॉल ते केरु हूंदो, ॾिसंदासीं, हलंदासीं कॉल ते ऐं शामिल कंदासीं कॉल। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अलाए छा थी वियो, कॉल होल्ड ऑन थी वई? जी ॾिसंदासीं, केरु आहे त पोइ शामिल करे वठंदा वठूं कॉल। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां? जी छा हाल आहे चांडिया साहिब? साईं मां थोराए थो तव्हांजो, मां खादिम तव्हांजो, भला जेको तव्हांजो इलाइक़ो आहे इहो कहिड़े ज़िले खे लॻे थो? अच्छा, वाह वाह, भली माल चाढ़ियो, शुक्र आहे, सुठी ॻाल्हि आहे ऐं सुठो कमु आहे। अवां असांखे ईअं सम्झो त कंबर शहदाद कोट डिस्ट्रिक्ट खां ॿुधो था, ईअं?
3: जी जी जी,
0: थैंक यू वेरी मच। माना तव्हांखे लाड़काणो एफ एम लॻंदो हूंदो, असांजो 88 लाड़काणा?
3: बिल्कुलु, हींअर मियावल चोट जबल ते थधा हुते असां टेंपल रही था, प्रोग्राम डेली ॿुधो आहे, हींअर असांजी संगत नंबर रही तव्हांखे ॾिनो आहे।
0: साईं मूंखे ख़बर आहे तव्हां सभई चांडिया बिरादरान जबल ते वेही त कॉल कयो था, तॾहिं सभिनी जी कॉल लॻे थी, इन जे करे तव्हां जूं महिरबानियूं, तव्हां जूं मोहबतूं मां थोराए थो आहियां तव्हांजो।
3: साईं मास्टर मंज़ूर कलाम ॿुधायो।
0: साईं मास्टर मंज़ूर हाज़ुर, तव्हांखे हाणे ई ॿुधो भला हले पियो?

0: जी जनाब, मास्टर मंजूरी जी सदाउन सान कॉल पर अटेंड कयूं था दिसुदा हाणे असा गड कॉल ते केर थो जुड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, वालेकुम सलाम।
0: हां भाई, किथा का?
1: हां भाई, न सब कुछ पुनु खान पावर तार के सेवन शरीफ का रुस्तम अली पावर पे बलाया।
0: जी रुस्तम पावर साहब, ता सा गड बे केर पे बुदे?
1: असई ता जो प्रोग्राम तमाम सठो पे बुदु, असा सा गड दिलीप कुमार मेंगोड़ ता जो प्रोग्राम पे बुदे, चोन कुमार कोली, कुर्बान अली खास केली,
0: लाड़काने स्टूडियो, मोरो स्टूडियो, मेरा करंट स्टूडियो, मटियारी, मीरपुर, ही सिंध जो सब का वडो हिकी वक्त ऑन ईयर जो नालो है जीए एफएम 8 नेटवर्क। अवजान अवसन बखारी ए मोहब्बत का सिलसिला जारी हो सारी दिसनासी त हाने स अगर कॉल ते केर आ है ए कॉल अटेंड कदे दिसनासी केर हुंदो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी तमा केर पे गलायो? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तव्हां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे?
1: असां गॾु मुंहिंजो भाउ आलम ख़ान डंगणो, गुलाम रसूल डंगणो, गुलाम अहमद डंगणो, चाचा वाहिद बख़्श डंगणो, अलायर डंगणो, एहसान बख़्श डंगणो ऐं अली नवाज़ वापारी डंगणो।
0: महिरबानी, लख थोरा सभिनी जा महिरबानी, कुर्ब तव्हांजा। ऐं हा दोस्त, वरी बि साॻियो अर्ज़ु, जॾहिं कॉल करियो था त इहो सोचियो त कॉल तव्हांजी जेका अचण महिल रेडियो परे रखो या रेडियो बिल्कुलु घटि आवाज़ कयो, अवल त बंदि करे छॾियो ताकी तव्हांजी कॉल पूरी दुनिया सही नमूने ॿुधे। हाणे अव्हां पंहिंजी कॉल ॿुधंदो न त रेडियो तां जेका असांजी ॻाल्हि ॿोल आहे उहा कॉल ते तकड़ी ॿुधंदा हूंदव, रेडियो मां घटि में घटि 40 सेकंड लेट सां ऑन ईयर थींदी आहे। इन करे ॿ गॾियल ॻाल्हियूं हूंदियूं ऐं अव्हां बि भुलिजी वेंदा, मां बि परेशान थी वेंदुसि। ॿुधूं था कॉल ते हाणे असां गॾु केरु हूंदो। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: केर साहब, ऐं किथां खां?
2: साईं गोठ काज़ी आरिफ तलके मेहर खां वफ़ा यासीन चांडे पियो ॻाल्हायां। सर वेलकम।
0: साईं थैंक यू वेरी मच। साईं
2: यामीन अली चांडियो, जामीन अली चांडियो, यासिर अली चांडियो, दिलीप कुमार मेघवाड़, वफ़ा मुनीर अहमद सियाल ऐं जिते जिते समातूं असांखे ॿुधी रहियूं आहिनि सभिनी खे क़बूल थिए सिक भरियो सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहबतूं मिठा माण्हू, पहिरियों दफ़ो कॉल कई तव्हां, ख़ुशि हुजो। ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच। दोस्तो, जेको दोस्त साफ़ सुथरो शॉर्ट ॻाल्हाए थो, सुठियूं ॻाल्हियूं करे थो, उन जी कॉल ते ॻाल्हाईंदे ॾाढो सुठो लॻे थो। ॾिसंदासीं कॉल ते हाणे केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल धणी पाण कटे छॾी, हिकिड़ी वधीक कॉल अची चुकी आहे, ॾिसंदासीं केरु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलो, आवाज़ अचे पियो साईं? जी जी, ॿियो तव्हां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? अलहमदुल्ला, सुख लॻा पिया आहिनि, तव्हां ॿुधायो। साईं साॻियूं देस साॻियूं वेस। हा, तव्हां ॿुधायो। न न, इहे अदबी ॻाल्हियूं आहिनि, पर रियल में ईअं त साह थो निकिरे, एॾी गर्मी आहे। हा, ॿियो ॿुधायो, ॿी हाल अहिवाल? साईं, उहो मौसम खाते ॿुधाए छॾियो आहे त 26-25 तारीख़ ताईं घुट ऐं घुसर। साईं सभिनी जूं महिरबानी, तव्हां पंहिंजी ख़बर ॾियो, ॿियनि दोस्तनि खे छॾे ॾियो, ॿिया पाण अची वेंदा लाइन ते। बस वञो, कंहिं वण हेठि बीहो, पाण चवनि ॻाल्हि ॿुधो, के वण हेठि बीहो, थधी छांव वठो, पाणी जो ढुक पियो ऐं दोस्तनि जा नाला तव्हां वठी वरिता आहिनि। ख़ुशि रहो, आबाद रहो, तारनि में चंड ऐं खीर में खंडो जो। ब्रेक वठण चाहे तो इंजीनियर इशारो अची वियो आहे उहो इशारो जेको हूंदो आहे उहो बिल्कुलु कंप्लीट सुठो इशारो हूंदो आहे पोइ वठूं था ब्रेक।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: असां चऊं तव्हांखे कुर्बान ख़ुशि आहियो, ठीकु आहे
1: साईं। साईं तोखां सदिको वञा थो, त सदिको वञा तोखां मिलण लाइ, तुंहिंजी काल लाइ मूंखे वॾी कोशिश करणी पए थी। हाणे मींहुं वसाइणो पियो
0: न, इहो जबल ते मींहुं न वसायो, बसि काल रीडायल ते रखी छॾियो। जीअं केरु काल छॾींदो त ऑटोमेटिक तव्हांजी काल मिली वेंदी।
1: चार मोबाइलूं खयो बीठो आहियां, मुंहिंजे हथ पर चार मोबाइल
0: ॾिसो, चार मोबाइलनि वारो वधीक चकर में हूंदो आहे न। चवंदा आहिनि त घणे ज़ाल घणे ज़ाले घर न हले, घणे हारीअ हर न हले। चईन खे फिटो कर, हिकड़ी ताईं काल कर त लॻी वेंदी।
1: बिल्कुल
0: सियाणो ऐं अॻे नंढे हूंदे खां होसि, पर तो सुञातो कोन थे यार। हा, केरु पियो ॿुधे तव्हां सां गॾु दोस्तनि जा नाला खणी? सफ़ा सुवाल ई पैदा कंदो थिए। न अॼु मुंहिंजो मूड कोन्हे न, अॼु आऊं सफ़ा बिल्कुलु तपियो पियो आहियां।
1: गर्मी
0: जाम लॻी आहे। हा, ऐं चाहियां थो दोस्तनि खे वधीक शामिल करियूं अॼु, माना हिकिड़े हिकिड़े दोस्त खे थोरो थोरो टाइम। जल्दी फटाफट, जी जी जी जी।
1: गुलाम रसूल मरी अज़ीज़ सोलंगी कान कलाचारी जुगदी सर का गुलाम रहीम बलोच प्यार अली लुंड ऐं कालक जरवार कालक सोलंग कालक लाचारी त जेके दोस्त ॿुधनि पिया कालक सोलंगी जेके समात में आवाज़ वञे पियो सभिनि खे कुर्बान काके झंडे मरियारी सलाह मोहबतूं प्यार जीओ।
0: जी जी साईं, महिरबानी लख थोरा सदको, थैंक यू। हीअ आहे जी एफ एम एटीएट रेडियो नेटवर्क, ऐं कॉलुनि जो सिलसिलो जारी आहे। ॾिसंदासीं त हाणे असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मिठा माण्हू।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां?
2: साईं आउं रांझन कोरी मीरपुर खां कोरी गोठ खां।
0: छा हाल आहे कोरी साहब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
2: अलाह पाक जी शुक्र आहे साईं।
0: हा, अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे साईं?
2: साईं मूं सां गॾु ॿुधे पियो डॉक्टर लालचंद, डॉक्टर फरहान ऐं फराज सोहेन ऐं रज़ा पंजाजनो।
0: तमामु घणी मोहबतूं उन्हनि दोस्तनि जूं ऐं तव्हांजूं, ख़ासि तौर तां रोज़ शामिल थियो था।
2: जी जी जी,
0: कुर्ब साईं, कुर्ब लख थोरा, लख थोरा। जी जनाब, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु आहे असां सां गॾु। हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: हैलो,
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: केर साहब ऐं किथां खां?
3: ज़ाकिर चांडियो थो ॻाल्हायां, कुबे खां।
0: कुबे खां ज़ाकिर चांडियो? ज़ाकिर तव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
3: कुझु संगती आहिनि,
0: संगती आहिनि, नाला वठो।
3: शोएब, मजीद, गुलकार, असद।
0: जी जी, बस
3: असद,
0: बस
3: नईम।
0: नईम, बस। महिरबानी, संगत खे सलाम, संगत खे सलाम। महिरबानी दोस्तो, ही असांजा प्यारा भाइर जेके असांखे कालू करे रहिया आहिनि, ऐं नंबर आहे 2340-3525-786। काल ते केरु हूंदो ॾिसूं था काल ते। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: केरु साहब ऐं किथां खां?
3: सर अल्ताफ़ हुसैन वठो पियो ॻाल्हायां, सुजावल मड़े पुला खान खां। कहिड़ा हाल आहिनि, तुंहिंजो तबियत ठीकु आहे?
0: अलहमदुल्ला, दुआ लॻी पई। अल्ताफ़ हुसैन वठो साहब, मड़ो बुला खान सुजावल। अच्छा, ॿियो अवां सां गॾु केरु पियो ॿुधे? सभिनी जेके दोस्त ॿुधनि पिया, सभिनी सां गॾु ॿुधो अथव, ईअं न? आवाज़ घटिजी वियो, भरियल महिरबानी लख थोरा साईं ओठा साहब, थैंक यू, थैंक यू। भलीकार चवंदासीं, कॾहिं कॾहिं किथां किथां जॾहिं कॉल कंदा आहिनि असांजा मौज़िज़ ॿुधंदड़ त परे परे खां ॿाहिराड़ियुनि में न, नेट न आयो हूंदो, इंटरनेट न आयो हूंदो, सिग्नल घटि हूंदा आहिनि, टावर बंदि हूंदा आहिनि, वॾी कोशिशि कंदा आहिनि त कॉल मिले थी। उन्हनि खे शाबस आहे, उन्हनि जी हिमत खे सलाम। कॉल अटेंड करण जी कोशिशि कयूं था, ॾिसूं त हाणे असां गॾु केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम,
0: अलहमदुल्ला। केरु साहब ऐं किथां खां? महिरबानी, तव्हांजो लख थो रहां सां गॾु केरु थो ॿुधे?
3: साईं मूं सां गॾु सॼी सिंध ॿुधे पई, पर ख़ासि करे हिन वक़्तु जेके ॿुधनि पिया उन्हनि रोस्तम अली पावर, रोशन अली पावर, कुर्बान ख़ासि अली, गुलाम रहीम बलोच, चोवन कुमार कोहली ऐं मुंहिंजी फैमिली जा कुझु मेंबर आहिनि, आरज़ू असलम जलालाणी, शिजात हुसैन जलालाणी, अख़्तियार हुसैन जलालाणी ऐं ज़वार नसीम रज़ा जलालाणी ऐं नंढड़ो नवी हैदर जलालाणी।
0: तमामु घणी महिरबानी ऐं मोहबतूं जलालाणी साहब, थैंक यू। जी मज़े सामाइन साज़ आवाज के साथ में शॉर्ट ब्रेक है डंडो ब्रेक है बिना ब्रेक यूनुस बकारी वापस इंदो छो तो प्रोग्राम है जारी हो सारी नंडे ब्रेक के खंपो वापस इंदो यूनुस बकारी।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी। हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम, एक नई दुनिया डा इन पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: खुशखबरी हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़। उधंदा रहो, उधंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
4: जीए FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जी नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: आप सुन
3: शिरकत लाइ न्यूयॉर्क रवानो पर रही वजीर अब्बास अराग़ची पहिरें ई न्यूयॉर्क पहुतल। अब्बास अराग़ची चयो आहे त गडि॒यल क़ौमूं आलमी अमुन ऐं सलामतीअ जो तहफ़ुज़ करण में नाकाम थियूं आहिनि। आलमी इदारे ते एतमाद बि ख़त्म थी चुको आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ चयो आहे त हाणे ईरान मिज़ाइल दुनिया में कंहिं बि हंध ते टारगेट खे निशानो बणाए सघनि था। ट्रम्प पंहिंजी ताक़त ईरान ते मढ़ी नथो सघे। ईरान ॼमी बीठल आहे।

0: वफाकी हुकूमत जो धरने वारे मामले ते पीटीआई से गालू करण का इनकार वफाकी वजीर अतातारण है त पीटीआई वारन जी गाल बाबत तारीफ सुठी ना है उनन सा गालू करण जो को भी फायदो ना है। पिशावर में तकरीब खिताब कंदे मीडिया से गालंदे अतातारण तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में अची अमन अमान की सूरत खराब करने की इजाजत न डी वेंदी। पीटीआई वारा होश का कम वठन बी सूरत में रहा नतीजा सामू अची सन था जो सदा याद रखा हम वक्ती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो वानी जूं भेनरू पार्टी ते कब्जो करण लाइ वो हादसो चाहन थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हुक्म न मञण खिलाफ़ कार्रवाई थी।
1: इस्लामाबाद इंतजाम

पिया जूं तहरीक इंसाफ़ जे 27 सेप्टेम्बर वारे इम्कानी लॉन्ग मार्च खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारियूं जारी। मुज़ाहिरीन खे छिड़ विछड़ करण खां पोइ वधीक गिरफ़्तारियुनि जो फ़ैसिलो। पंजाब खां 16,000 ऐं सिंध खां 2,000 अहलकार घुरी वरिता। ॿिन्ही सूबनि खां 3 DIG, 7 SSPs ऐं 18 SPs पे तलब। ज़रियनि जो चवण आहे त मार्च खे मुंहुं ॾियण लाइ इस्लामाबाद पुलिस 82.7 करोड़ रुपया पिण घुरिया आहिनि। इस्लामाबाद ऐं अटक जे अहम हंधनि ते 2,000 खां वधीक कंटेनर्स पहुचाया विया। 3,000 जे लॻभॻि अहलकार अटक में मुक़ररु हूंदा। पेशावर मोटरवे M1 खे बि मोटर

0: रेडियो वाले आना चाहिए, जरा जल्दी जल्दी आना जो है वो बात। और उस दिन अगर वो हमें बताते हैं कि ये रिलीफ हम दे रहे हैं तो सब यार, और अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास अक्टूबर का पहला हफ्ता भी है, पहला अशरा भी है, हम उसी तरीके से उसी कुवत से अपने इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करेंगे।
1: जमात इस्लामी पेट्रोलियम नेवी खिलाफ इस्लामाबाद जारी मार्च मुलतवी करे छो, अवाम के लीफ न मिलने की सूरत में अक्टूबर में बीहर मार्च करण जो ऐलान। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम है एहतजाज मुलतवी करण जो फैसलो वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त है। जमात इस्लामी की क्यादत वतन वापसी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कन्दी, मुलाकात दौरान लेवी

0: ॿार जा नंढड़ा कदम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि कदमनि खे रोके बि सघे थो। इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: पापा चुनी कहें हवा में उडारे कुठो। पुसल शाम जे हर इशारे कुठो आ, चुनी कहें हवा में उडारे कुठो आ, वरी पान उलझी बुडासी अखिन में, वरी पान उलझी बुडासी अखिन में, वरी इश्क कहजे कुंवारे कुठो आ। अची याद वेही गुलाबी चपन जी, अची याद वेही गुलाबी चपन जी, उफक रंग लालाण हारे कुठो आ।
1: It's 12.

0: जी दोस्तों, वेलकम भलीकार प्रोग्राम दिल जी गल से कर आऊं आया आबिद चौहान आवा बुधी रहे आओ जीए एफएम नेटवर्क। प्रोग्राम जो प्रॉपरली फीडबैक मिली होंद है मुख्य अवज कॉल्स वसीले अवज टेक्स्ट मैसेज वसीले त खूबसूरत पहलू आन प्रोग्राम जा ये बई बे गीत बे त पोएट्री बे अवसा गल बोल भी टों बल्कि मां समझा तो इन टिन्ही मजा अवसा गल बोल इम्पोर्टेंट पहलू मुख्य महसूस अवज फीडबैक मजाकर हर दोस्त जो गालण चाहिंदो आहे पंहिंजे दिल जी ॻाल्हि करण चाहिंदो आहे। प्रोग्राम जो नाओ भी दिल जी ॻाल्हि आहे त पोइ अचो तव्हां सां अव्हां जे दिल जूं ॻाल्हियूं ॿुधूं ऐं दिल जूं ॻाल्हियूं कयूं। कॉलर आहिनि लाइन ते, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: वालेकुम सलाम साईं, गुलाम सरवर ज़रदारी मोरे खां साईं।
0: गुलाम सरवर ज़रदारी मोरो खां?
1: हा साईं।
0: वेलकम भली कार प्यारा, कहिड़ा हालनि? एॾो तकड़ो तकड़ो पिया ॻाल्हायो, काॾे वञिणो आहे, रेल निकिती थी वञे?
1: जी साईं,
0: माजो काॾे तकड़ आहे, एॾो जल्दी जल्दी में ॻाल्हायो पिया? तकड़ नाहे, प्यार सां ॻाल्हायो थोरो। प्यार मां मुराद ईअं न आहे त आवाज़ एॾी हल्की कयो जो ॿुधण में न अचे। ॻाल्हायो ॻाल्हायो, छा था चवण चाहियो? पंहिंजे दिल जी ॻाल्हि कयो का।
1: दिल जी ॻाल्हि आहे त अमुन हुजे, जहिड़ो झटो न हुजे, कुर्ब मोहबत सां रहूं।
0: हा, दिल जी ॻाल्हि इहा आहे त हुजे अमुन, जहिड़ो झटो बि न हुजे। जी साईं, बिस्मिल्ला इरशाद।
1: हा साईं,
0: हलो।
1: मिलना है तो मिल जाओ दुनिया के इस चमन में, फिर मिलने का क्या फायदा जब लाश हो फन में।
0: भौ मार छोड़े सफा कप छोड़े। बस खत्म ही आग दिया है को सिलसिलो खत्म थी हो ना, आखिरी हुई गाल जड़े कफन जी गाल पोती तो इन का पुछा रहे दफनायण। अल्लाह अवां खे हयाती ॾे, वॾी जमार ॾे, सिहतमंदी, मोहबत जो पैगाम ॾियो। मायूसी जी ॻाल्हि न कयो भाउ, मरणो बिल्कुलु हिकु ॾींहुं आहे, पर इहो हा जेको आहे त मायूसी अजा ई आहे। दोस्तनि जा नाव शामिल करणु चाहींदो? बिल्कुलु वॾी महिरबानी प्यारा, हिननि सॼी अवां जी संगत खे मुंहिंजा सलाम हुजनि। थैंक यू कुर्ब। अस्सलाम वालेकुम, केर साईं किथां खां?
1: वालेकुम सलाम, आबिद हुसैन यादी मदद।
0: सखी पीर मौला अली मदद, केर साईं किथां खां? हादी बस चाचर किथां? साईं साईं मुंहिंजो सखर शहर मुंहिंजो सॼो पंहिंजो आहे, हूअं त सिंध सॼी पिरीअ जो पाछो आहे।
1: प्रोग्राम प्रोग्राम पूरी सिंध
0: लव यू, लव यू सर, वॾी महिरबानी, लख लाइक। केरु गॾु पढ़ंदो हो, कंहिंजो ज़िक्र पिया कयो? अच्छा, पंहिंजा ॿुधायो। प्रोग्राम जी जी, अवां जी पहिरें भेरो जेका त कॉल लॻी आहे।
1: पूरी सिंध खां कॉलूं ईंदियूं आहिनि, संगत जा हाल अहिवाल ऐं तव्हांजो असांजो हिकिड़ो दलाल जो कलाम ॿुधाए, मुंहिंजी दिलि अव्हां सां अलाए छोड़ी आहे।
0: मुंहिंजी दिलि अव्हां सां
1: अलाए छोड़ी आहे,
0: अलाए छोड़ी आहे। असां शामिल कयूं था इनखे पंहिंजे प्ले लिस्ट में। अवां कुझु दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो?
1: पूरी सिंध ॿुधे थी, जेके बि ॿुधनि था असांजे तरफ़ो यादि मदद।
0: वालेकुम सलाम, सखी पीर मौलानी मदद, कुर्ब साईं लव यू, लख लाइक।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: जिस धरती से जुड़ा है

0: गडि॒यल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतरेस चयो आहे त गुज़िरियल ॾहाके में शुरू थियल जंगियुनि तबाहीअ जा असर दरिया जंगियूं बेइज़ती सां जारी रहियूं ऐं शहरियुनि खे निशानो बणायो वियो। जंगियुनि में इंसानी हक़ पामाल करण समेत रुख खे हथियार बणायो वियो। रुगो फ़ौजी ताक़त, सिक्योरिटी ऐं माशी क़ुवत इस्तेहकाम जी ज़मानत न आहे। अमन जे क़याम लाइ सभिनी खे गॾिजी क़दम खणणा पवंदा। जनरल असेंबली इजलास खे ख़िताब कंदे अंटोनियो गुतरेस चयो त ताक़त जो इस्तेमाल मसइलनि जो हल न आहे। आलमी कानून सभिनी लाइ बराबर आहिनि, अमन लाइ हिकु अंध वेही मसइलनि जो हल करणो पवंदो। जंग हर सूरत में बंद ऐं इमदादी सामान जी फरहमी जारी रहणु घुर्जे। जहाज़ानी जी आज़ादी बि बहाल थियणु घुर्जे।
1: अठ इस्लामी मुल्कनि जे परडे॒ही वज़ीरनि पारां गज़ा में लाॻीतो इंसानी अलमीअ जी मज़म्मत।

थाणे वारे मामले ते पीटीआई सां ॻाल्हियूं करण खां इनकार। फाकी वज़ीर तारण चयो आहे त पीटीआई वारनि जी ॻाल्हियुनि बाबति तारीख़ सुठी नाहे, हुननि सां ॻाल्हियूं करण जो को फ़ाइदो बि नाहे। पिशावर में तकरीब साम्हूं अची सघनि था जो सदाई यादि रखंदा। मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी जो चवणु आहे त बानी जूं भेनरियूं पार्टी ते कब्ज़े करण लाइ वॾो हादसो चाहिनि थियूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो हुकुम न वञीदड़नि ख़िलाफ़

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी हाँ, अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।